जय हिंद। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। अब हमारी आज की सभा शुरू होती है। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। आइए मिलकर अपने दिन की शुरुआत करें आजाद हिंद गान के साथ।

गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सुन रहे हैं सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। दोस्तों, आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी, आज के छोटे छोटे से सही निर्णय बेहतर भविष्य बनाते हैं। और उनके अलावा भाई बहुत सारे लोग इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारा जो भविष्य बनता है वो हमारे आज के कर्मों से बनता है। आज हम जो भोग रहे हैं वो बीते कल में हमने जो कर्म किए थे उसी का नतीजा है, उसी का फल है। इसीलिए अगर आने वाले टाइम में हम कोई सपने को अचीव करना चाहते हैं, हमारा कोई टारगेट है, कोई गोल है, हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें आज बदलाव करना होगा अपने काम में, अपने जीवन शैली वगैरह में। इसीलिए अगर कोई भी ड्रीम है हमारा तो हमें आज बदलाव लाने होंगे वर्तमान में, तभी भविष्य का निर्माण होगा। सुनते रहिए आपका अपना सुभारती आजाद हिंद रेडियो।

गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सुन रहे हैं सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो। दोस्तों, हर दिन एक नया अवसर होता है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। नई शुरुआत का उत्साह मिलता है और पुरानी गलतियों का बोझ कम होता है। एक नए दिन की शुरुआत करें तो थोड़ा पॉजिटिव रवैया, पॉजिटिव एटीट्यूड हमको रखना चाहिए कि जो गलतियां हुई है उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट हर रोज थोड़ा थोड़ा ही सही लेकर जरूर आना चाहिए। तो ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहिए, उसने एक और नया खूबसूरत दिन हमको दिया है जब हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, उनसे सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। यही एक अच्छे माइंडसेट की निशानी है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात।

0: अरे भाई कहाँ जा रहे हो?
1: मंदिर जा रहा हूँ।
0: मंदिर तो बंद है, मंदिर पूरे एक साल बाद खुलेगा।

सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं वास्तु कृष्णा हूं और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। हर इंसान को एक्स्ट्रा एहतियात बरतने की जरूरत है, दूसरे के भरोसे मत रहिए, इसलिए खुद अपनी जिम्मेदारी समझिए। हम ये नहीं सोच सकते हर टाइम पर कि दूसरे वाला जो व्यक्ति आ रहा है सड़क पर वो रूल फॉलो कर लेगा, क्योंकि जैसे हालात है उससे लगता है कि हम ही को जिम्मेदारी उठानी होगी। तो दोस्तों, मैं तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। ये भी ध्यान रखना होगा कि घर पर परिवार आपका इंतजार करता है, कोई है जो हर वक्त आपकी बाट जोह रहा है। इसीलिए सड़क पर, चाहे गाड़ी में चलें, बाइक पर, स्कूटर पर चलें, या पैदल चलें, या साइकिल पर चलें, आपको अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद निभानी होगी, क्योंकि जान है तो जहान है।

गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। हर सुबह कुछ नई ताजगी भरी बातें, कुछ पॉजिटिव विचार, ऐसे हमारे भीतर होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बीते दिन में, बीते कल में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिनकी वजह से हमारा मन खिन्न रहता है, हम स्ट्रेस में, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, हमारी लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, हमें कोई बात पसंद नहीं आती है और हम इरिटेट होकर घूमते रहते हैं। देखिए, जो बात गई रात गई, उसको भूल जाइए। हर बात से एक एक्सपीरियंस हमको लेना चाहिए कि जो भी हुआ उसकी वजह क्या थी, उससे तजुर्बा लीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्योंकि ये जो आज का दिन मिला है, ये आने वाले दिन में नहीं रहेगा, ये वक्त आज ही है और इसकी कीमत इतनी बेशकीमती है कि एक पल, एक घड़ी, एक लम्हा, एक मिनट, सेकंड भी हम कितनी भी धन दौलत देकर खरीद नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है ये। बहुत से लोग कहते हैं कि टाइम इज मनी, यानी समय ही पैसा है। लेकिन दोस्तों, इसे थोड़ा सा और अपडेट कीजिए, समय सिर्फ पैसा नहीं है, समय ही जीवन है। जीवन वापस नहीं मिलता, समय की कद्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से अच्छे लोगों ने बहुत से अच्छे विचार हमको दिए हैं, इसलिए हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखिए। अच्छे पॉजिटिव विचारों के साथ आगे बढ़िए। किसी से कोई गलती होगी, उसको माफ कर दीजिए, गले लगा लीजिए, आगे बढ़ जाइए। आपकी समझ में नहीं आता तो छोड़ दीजिए और हमेशा हमेशा के लिए लाइफ में ग्रो कर जाइए। गुड मॉर्निंग, सुनते रहिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और

0: प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
3: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम है आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

पीत वस्त्र प्रिया शुभा पीत गंध प्रिया रामा पीत रत्नार्चिता शिवा अर्ध चंद्र धरी देवी गदा मुदगर धारिणी सावित्री त्रिप्रदा शुद्ध सगोराग विवर्धिनी विष्णु रूपा जगन्मोह ब्रह्म रूपा

गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। ये मेरठ का नंबर वन सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो है। दोस्तों, मैं हूं वास्तु कृष्णा। यदि आप अपने पैसे का प्रबंध नहीं करेंगे तो पैसा आपका प्रबंध नहीं करेगा। अर्थ मैनेजमेंट से है, प्रबंधन से है। अगर आप अपने पैसे की कद्र नहीं करते हैं, नहीं समझते हैं, कितना भी पैसा आता है और उसे बर्बाद कर देते हैं, उड़ा देते हैं, खर्च कर देते हैं, दूसरों को दिखावे के चक्कर में महंगी चीजें ईएमआई पर उठा लेते हैं, तो याद रखिए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल आज की डेट में पैसा ही है दोस्तों। लेकिन वो तब है जब आप उसकी कद्र करेंगे। आप कम कमाएं या ज्यादा कमाएं, पैसे को मैनेज करना सीखिए। पैसे को आप मैनेज करेंगे तो पैसा आपको मैनेज कर देगा, बिना आपकी जानकारी के भी। दोस्तों, पैसे में इतनी ज्यादा ताकत है। आज के समय में पैसा सबसे बड़ी शक्ति है। पैसे के भीतर रूपांतरण की शक्ति है। पैसा आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। पैसा है तो इज्जत है, पैसा है तो रिश्तेदार है, पैसा है तो मान सम्मान है। क्योंकि कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और ये तब संभव है जब आप अच्छे पैसे को मैनेज करते हैं, अच्छा रहन सहन, खान पान, पहनावा वगैरह सब मैनेज करते हैं, तब आपका इंप्रेशन कहीं बनता है। तो पैसे को मैनेज करना सीखिए। आप कम कमाते हो या ज्यादा कमाते हो, पैसे को वेस्ट मत कीजिए, दूसरों को दिखावे के चक्कर में मत पड़िए। जिंदगी को तभी मैनेज कर पाएंगे। लाइफ मैनेजमेंट का सबसे जरूरी हिस्सा आज की डेट में मनी मैनेजमेंट है। पैसे की कद्र, चाहे आप कोई भी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो या जवान, कम कमाएं या ज्यादा कमाएं, चाणक्य ने भी कहा है। और ये तो हम भी जानते हैं ना दोस्तों, कि जिसके पास पैसा नहीं होता आज के जमाने में, उसके पास शायद कुछ नहीं होता। इसलिए पैसे को अपना मित्र बनाओ, उसे पानी की तरह मत बहाओ, क्योंकि पसीना और खून बहाकर आपने उसे कमाया है।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA Honors Hindi, BA Honors English, MA Hindi, MA English। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।
4: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
5: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
6: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
5: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर, गढ़ रोड, किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
7: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: जय हिंद, मैं हूँ वास्तुराज कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। और आइए दोस्तों, अब समय हो चला है आज की एक खास प्रस्तुति का। स्मार्ट एनजीओ के तत्वाधान में मिलकर सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर ये खास प्रस्तुति।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। ये केवल एक नाम नहीं है बल्कि एक संकल्प है, हर घर तक बेहतर स्वास्थ्य की रोशनी पहुंचाने का, हर चेहरे पर मुस्कान लाने का। दोस्तों, हमारा ये विशेष कार्यक्रम समुदाय के बीच जाकर लोगों के जीवन से जुड़कर उनकी दिनचर्या, उनकी परेशानियों और उनके स्वास्थ्य से जुड़े अनुभवों को समझने का एक सच्चा प्रयास है। हम न केवल उन्हें स्वस्थ रहने के आसान और प्रभावी उपाय बता रहे हैं बल्कि उनके मन में उठ रहे सवालों और चिंताओं को भी ध्यान से सुन रहे हैं। और इन्हीं सब के बीच जब हमने टीकाकरण पर लोगों से बातचीत की तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल थे, कभी संकोच, कभी डर, तो कभी जिज्ञासा। तब हमने इन सभी प्रश्नों को इकट्ठा किया और ये वादा किया कि हम उनके सभी प्रश्नों का जवाब विशेषज्ञों के माध्यम से जरूर उन तक पहुंचाएंगे। तो इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या पर जिस पर अगर अभी ध्यान न दिया जाए तो आने वाली पीढ़ियां हमेशा हमसे सवाल पूछती रहेंगी। दोस्तों, आज का ये खास पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो बच्चों को होने वाले टीकाकरण को हल्के में लेते हैं या फिर इग्नोर करते हैं। और अगर स्वास्थ्य कर्मी घर तक पहुंचे तो कहते हैं कि हमारे बच्चे को टीके की जरूरत नहीं है। तो अगर आज आपके मन में भी इम्यूनाइजेशन को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं तो आज का ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपको बता दें कि आज स्टूडियो में विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं SGPGI यानी कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य और आपसे बातचीत कर रही हैं सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च यानी कि CFAR की प्रोग्राम लीड रंजना द्विवेदी जी। तो आइए इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर टीकाकरण से जुड़ी सही जानकारी प्राप्त करें, अपने संदेह दूर करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल जीवन की ओर मजबूत कदम बढ़ाएं।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम बात करेंगे टीकाकरण पर, और टीकाकरण ही नहीं, टीकाकरण क्यों नहीं कराते हैं लोग, लोगों को में क्यों हिचकिचाहट होती है टीकाकरण को लेके। बहुत सारे लोगों को कुछ तरह के संदेह होते हैं, कुछ उनकी अपनी मिथ्या धारणाएं होती हैं, और इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य जो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में है। तो नमस्कार मैम।
3: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे।
2: मैम, टीकाकरण बहुत जरूरी है, सबको पता है
3: जी,
2: लेकिन फिर भी लोग हिचकिचाते हैं। जानते हैं बच्चे की जान बचेगी, फिर भी हिचकिचाते क्यों?
3: देखिए, ये तो बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम है कि इसमें हिचकिचाहट ही सिर्फ नहीं है, कंप्लीट रिफ्यूजल भी होता है कि हम करवाएंगे ही नहीं, अच्छा सोचेंगे, अच्छा थोड़े दिन बाद करवा लेंगे। तो इसके लिए तो हम जब देखते हैं तो पूरा एक ये स्पेक्ट्रम है, कंप्लीट रिफ्यूजल ना से और सोचते हैं से लेकर अच्छा करवा लेते हैं तक। तो हेजिटेंसी जो है, मतलब हिचकिचाहट जो है टीकाकरण को लेके, ये हर एक के मन में होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो अभी कमजोर है, कुछ दिन बाद करवा लेंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे लेके जाएंगे, बच्चे को अगर बुखार हुआ, कोई और चीज हो गई तो। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बीमारी के लिए हम टीका लगवा रहे हैं वो बीमारी तो बहुत दूर की बात है, इसलिए लोगों को वो बीमारी के बारे में ज्यादा नहीं समझ में आता है। पर जो फीवर अभी होगा, बुखार अभी होगा, जो बच्चा रोएगा, वो अभी तुरंत उनको दिख रहा है, तो वो तुरंत की वजह से ज्यादा हिचकिचाहट होती है।
2: तो इसी पे मैं पूछना चाहूंगी मैम, जैसे अगर आपके पास तो रोज बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, क्या कुछ लोग सिर्फ पूछने के लिए आते हैं कि हम बच्चों का टीकाकरण कराएं या ना कराएं? संदेह रहता है उन्हें, मतलब इतना समझ के पढ़ लिख के भी आते हैं फिर भी उनके मन में संदेह रहता है कि कराएं या ना कराएं, तो क्या ऐसे लोग भी आते हैं आपके पास?
3: बिल्कुल आते हैं। जो ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग है वो तो अब गूगल चाचा से भी समझ के आता है और सब जगह से पढ़ के आता है, तो उसकी सारी पूछताछ ज्यादा होती है। जो थोड़ा हमारे गांव की महिलाएं हैं, गांव के लोग हैं, वो ANM के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा रहते हैं, आंगनवाड़ी दीदी, ANM दीदी, तो उनसे लगातार मिलने की वजह से थोड़ा बहुत संदेह रहता है, पर उनको हेल्थ का इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है इन लोगों से, तो इसलिए उनकी शंकाएं जरा सा कम होती है। बीच तबके के लोग जो हैं, न बहुत ज्यादा अमीर न बहुत ज्यादा गरीब, उनमें डाउट तो रहता है पर उनमें एक्सेप्टेंस बेटर होता है।
2: क्यों रहता है मैम? एक्चुअल में देख अनुभव होता है, जैसे मेरे अपने बच्चे हैं, मैंने देखा कि उनको टीकाकरण हुआ, बुखार आ गया, मतलब कुछ उनका अपने अनुभव की वजह से ऐसा होता है या इन जनरल ऐसा होता है जिसका पहला टीकाकरण है वो भी इस तरह के होते हैं?
3: देखिए हमारी सोसाइटी जो है ना वो कहानियां बहुत बनाती है।
2: हाँ,
3: तो एक बच्चे को अगर फीवर आया, उसने पड़ोस में बताया भाई मेरे बच्चे को टीकाकरण के बाद फीवर आ गया, वो तीसरे को बताता है, तीसरा बताता है अरे उसको 105 डिग्री आ गया, पांचवें चौथे तक सातवें तक पहुंचते पहुंचते फीवर के साथ में झटका भी आने लगता है, झटके के साथ मुंह से झाग भी निकलने लगता है। तो जब तक वो उस औरत के पास पहुंचता है जो अपने बच्चे को पहली बार लेके जाने वाली है, उसका इतना बतंगड़ बन चुका होता है उस बात का कि वो हिचकिचाती है, अब डरती है कि मैं ना जाऊं, मैं ना लगवाऊं, अरे उसके बच्चे के साथ ये हो गया था तो मेरे बच्चे के साथ ना हो जाए। तो ये जो छोटी छोटी कहानियां हैं जो एम्पलीफाई हो जाती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो वो बढ़ चढ़ के बताते बताते कई लोग जो लगाने भी जा रहे होते थे उनके कान तक पहुंचते पहुंचते वो इतना बढ़ गया होता है कि वो मना करने लगते हैं कि नहीं रहने तो भैया।
2: तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मैम, नहीं लगाते लोग, किस संदेह के कारण नहीं लगाया, हिचकिचाहट के, और अल्टीमेटली बच्चे की सेहत पे असर पड़ता है, कुछ बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे, मतलब उनको इसको दूर करने के लिए किस तरह की चीजें होनी चाहिए समाज में, और दूसरी चीज अगर बच्चा कमजोर है कुपोषित है तो क्या उसका टीकाकरण किया? ये भी एक मिथ है लोगों के बीच में कि भाई हमारा बच्चा बहुत कमजोर है टीका लगेगा तो पता नहीं, और अगर बुखार उखार आ गया तो और कमजोर हो जाएगा, तो इन सब चीजों को कैसे देखें हम?
3: देखिए जो बच्चे कुपोषित है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनमें बीमारी आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक नॉर्मल रिष्ट पुष्ट बच्चे को शायद बीमारियां कम हो, पर एक कमजोर बच्चे को ये जितने कीटाणु होते हैं वो सब पकड़ने लगते हैं। तो उस बच्चे को अगर टीकाकरण होता है तो चांस बड़ी बीमारी होने का घट जाता है, तो उस बच्चे की जान बच जाती है। तो अगर ऐसे कुपोषित बच्चे हैं उनको तो टीकाकरण होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है, टीकाकरण ना होने से उनके शरीर को इसका एहसास ही नहीं होता है कि वो बड़ी बीमारियों से कैसे लड़े। तो हमारे पास जब टीकाकरण है तो टीकाकरण करने से आप समझ लो शरीर को ये अभ्यास होता है कि ये बीमारी आए तो हमें कैसे लड़ना है, और जब वो बीमारी आती है तो कुपोषित बच्चे का शरीर भी तैयार होता है उस बीमारी से लड़ने के लिए, तो जान माल सब बच जाता है।
2: बहुत अच्छी बात बोली मैम आपने कि जब टीकाकरण होता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है वो मजबूत होता है, अगर बच्चा कमजोर है कुपोषित है लेकिन टीकाकरण उसको वो ताकत देता है कि अगर कोई बीमारी उसको घेरती है तो वो उससे लड़ सकता है। एक बड़ी चीज ये भी है मैम कि बहुत सारे लोग दिहाड़ी मजदूर होते हैं, है ना, पढ़े लिखे भी बहुत नहीं होते हैं, उनको उन तक शायद हमारी पहुंच भी नहीं हो पाती है और वो नहीं करवा पाते किसी कारण से टीकाकरण। तो अगर किसी का मतलब एक टीका छूटा पूरा हमारा, क्योंकि हमारा तो शेड्यूल है पूरा, हमारा एक पूरा एक नियम है कि ये टीका लगेगा फिर वो टीका, अगर ऐसा कुछ होता तो उनके लिए क्या है कि जब जागे तब सवेरा, या मतलब किस तरह से वो अपने टीकाकरण को सुनिश्चित करवा पाए?
3: जब आपने दिहाड़ी की बात करी है तो आपको समझना पड़ेगा कि उनके मन में क्या शंकाएं रहती हैं या क्या प्रॉब्लम होती है। जब ये आप समझ जाओगे तो ही उसको दूर कर पाओगे। दिहाड़ी मजदूर का एक सेंटर पे बच्चे को लेके जाना, मैंने एक दिन की रोजी रोटी गई, आने जाने का खर्चा अलग से लगा, क्यू में खड़े होके टीकाकरण कराने का समय और गया, बच्चे को अगर फीवर आया डॉक्टर को दिखाना पड़ा दवा करनी पड़ी तो उसका खर्चा और गया, अगर उसको घर पे एक दिन और रुकना पड़ा तो एक दिन और की गई। और ये मत समझना कि अगर वो ड्यूटी पे नहीं गया तो किसी और को वो ड्यूटी नहीं दे देंगे और उसको बिठा नहीं देंगे, तो उसके लिए ये एक रिस्की बात हो जाती है, इसलिए वो डरता है। अगर वो इन सब शंकाओं से पार उतरे तभी तो वो बच्चे को लेके जाएगा ना।
2: बिल्कुल।
3: तो उसको सबसे ज्यादा रीअश्योरेंस की जरूरत है कि अगर छूटा है तो नहीं छूटना चाहिए, अगर छूटा है तब भी आप टीकाकरण पूरा करो।
2: तो बच्चे की सेहत के लिए, उसके भविष्य के लिए टीकाकरण जरूरी है। दिहाड़ी आप थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए। सभी श्रोताओं से मेरा कहना है कि बच्चे, अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तब आप दिहाड़ी पे भी जा पाओगे, अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा तो आप दिहाड़ी पे भी नहीं जा पाओगे। और टीकाकरण स्वस्थ रखने में बहुत मददगार होता है, इसलिए सबको टीकाकरण करना चाहिए। मैम एक और चीज देखी गई है, बच्चा तो छोटा होता है, माँ बाप होते हैं, क्लोजली माँ बाप होते हैं, लेकिन ये निर्णय लेना कि बच्चे को टीकाकरण, क्योंकि बहुत सा मतलब समाज में हम देखते हैं दादी नानी सबके अपने अनुभव होते हैं, हमने 10 बच्चे पैदा किए, हमारे बच्चे तो बिना टीकाकरण के अच्छे हैं, इस पे क्या आप सलाह देना चाहेंगी लोगों को? क्योंकि मतलब स्पेशली घर के बड़े लोगों को या जो भी उनको सपोर्ट करते हैं।
3: रंजना जी, ऐसा होता है कि माँ जो है वो अथॉरिटी नहीं होती है घर में, तो दो तरह के परिवार होते हैं, एक जैसे हमारे आपके, हम हमारे पति और हमारे दो बच्चे, इस तरह का परिवार होता है। एक होता है भरा पूरा परिवार जिसमें दादा दादी चाचा चाची सब होते हैं, तो वो एक सम्मिलित, एक सब लोगों का एक डिसीजन होता है, उसमें सिर्फ माँ बाप का नहीं होता है। तो ऐसे में माँ क्योंकि हेल्थ वर्कर के साथ बार बार बार बार उठती बैठती है, हमारी आंगनवाड़ी दीदियां सब घर जाती हैं, तो उन बहनों का इन्फ्लुएंस माँ पे होता है, पर फाइनल अथॉरिटी अगर न्यूक्लियर फैमिली है, हम दो हमारे दो वाले, तो फादर की होती है। पर माँ समझा बुझा सकती है, कह सकती है, और अगर सम्मिलित परिवार है तो फिर तो सास का बहुत बोलबाला रहता है। सास ससुर अगर कह दे कि नहीं कराना है तो माँ बाप चाहते हुए भी नहीं कराते। तो आपने जैसे कहा कि सास कह देगी हमने भी तो बच्चे पाले थे, कौन सा उनका टीका करवाया था, सब अच्छे हैं, कौन सा तुम्हारा बेटा जो है कहाँ से वो आ गया है कि उसको जो है टीकाकरण नहीं करवाए, तो कुछ नहीं, तुम काम नहीं करना चाहती हो, दिन भर वहां बैठी रहोगी गप्पे मारोगी इसलिए तुम जाना चाहती हो। पर हाँ, आज के जमाने में जैसे गूंज से या कहीं से भी अवेयरनेस जैसे हम फैला रहे हैं, तो कुछ समझदार सासें होती हैं, वो कहती हैं कि हाँ बीमारियां तो है तो लगवा ही लो बहू, भेज भी देती हैं। तो दो तरह के थॉट्स होते हैं, और जब ये सम्मिलित डिसीजन की बात आती है ना, तो वहाँ थोड़ी सी हिचक बढ़ जाती है। जो न्यूक्लियर फैमिली होता है वो फास्टर होता है, फटाक से कि हमें तो लगवाना है, पर पीछे से कौन देखेगा अगर बीमार हो, क्योंकि हम दो हमारे दो में तो हम दोनों वर्किंग है, काम कर रहे होते हैं, वो तो काम पे निकल जाएंगे, पीछे से बच्चे को कौन देखेगा, या तो बड़ा बच्चा देखेगा उस छोटे बच्चे को, तो थोड़ी दिक्कत तो उसमें आ जाती है। और सम्मिलित परिवार में तो दादा दादी चाचा चाची सब मिलके बच्चे पाल देते हैं, तो उसमें एक बार अगर हाँ हो जाए तो फिर बच्चे के साथ कोई और दिक्कत नहीं आती है, मामला बहुत स्मूथ हो जाता है।
2: धन्यवाद मैम। एक डर लोगों के बीच में, क्योंकि कभी कभी होता है किन्हीं कारणों से किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और कोविड के बाद बहुत सारी अफवाहें फैली टीकाकरण के बाद लोगों की डेथ, और थोड़ा सा हमने देखा है कि हमारा जो प्रतिशत है वो कम हुआ है, एक दोबारा से वो उस विश्वास को जगाने में बहुत प्रयास करने पड़ रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों को बताएं कि टीके कितना सुरक्षित हैं और इन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए।
3: देखिए, वो जो कोविड वाली मेमोरी है ना, वो तो इंसान के जहन में बैठ गई है, कितनों को ही हमने मरते देखा, कितनों को ही इतना परेशान दौड़ते हुए देखा, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो जो मेमोरी है ना, वो यादें वो दिमाग में बस जाती हैं। ऊपर से जब कोई भी नया वैक्सीन आता है, जैसे कि हमने 2016 में IPV या इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, न्यूमोनिया का वैक्सीन, ये सब लॉन्च किए, तो कोई नई चीज आती है ना, तो इंसान की दुविधा बढ़ती है, हिचकिचाहट बढ़ती है, और कोविड के मौतों के बाद से तो लोगों के दिमाग में डर तो बैठ ही गया था। पर ये जानना पड़ेगा कि हमारी ये जिन वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं वो तो कोविड से पहले भी थी और आज भी हैं।
2: बिल्कुल,
3: अगर सुरक्षित नहीं होती वो वैक्सीन, तो इतने सालों से चली आ रही है, हम देखते कि वो सुरक्षित नहीं है, पर ऐसा तो नहीं हुआ, कोविड से पहले भी थी और आज भी है। और एक बच्चे का अगर देखो, उस वैक्सीन को हम एक बच्चे को तो नहीं लगाते, हम तो वही वैक्सीन पूरे इंडिया में वही बैच हजारों बच्चों को लगता है, तो एक बच्चे की अगर मौत होती है तो वो इन्वेस्टिगेट करने वाला होता है कि उस बच्चे की मौत क्यों ही, ऐसा तो नहीं हुआ कि इससे बहुत सारी मौतें हो गई, तब वो इन्वेस्टिगेशन का मामला बन जाता है। अदरवाइज अगर सिंपली एक क्लस्टर में एक ही बच्चे की मौत हुई तो ये जांच लेना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है उसमें कोई बड़ी बीमारी थी पहले से ही और उसको टीका लग गया। तो कई कारण हो सकते हैं कि बच्चे की मौत हुई हो, और ऐसी बातें ना अफवाहें ऐसे फैलती हैं पागलों की तरह कि क्या बताएं हम, उससे लोग और डर जाते हैं। पर क्योंकि जैसा मैं कह रही हूँ कि हमारे टीके कोविड से पहले भी थे, आज भी हैं, तो वो बहुत ही सुरक्षित टीके हैं, तभी वो पब्लिक में अभी तक विश्वास के साथ दिए जा रहे हैं।
2: थैंक यू मैम। और धीरे धीरे हम लोग टीकों में बदलाव भी कर रहे हैं, बहुत सारे टीके लगने की जगह कई टीकों का एक वैक्सीन बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैम, क्या आपको लगता है कि शिक्षा का स्तर जो होता है समुदाय में उसका असर होता है, वो प्रभावित करता है टीकाकरण के प्रति लोगों को प्रेरित करने या ना प्रेरित करने में?
3: बिल्कुल करता है, जितनी शिक्षा उतना डाउट। जो देखना ज्यादा शिक्षित होते हैं ना रंजना, वो आके पूछेंगे ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। हमारा काम है उन्हें रीअश्योर करना। जो कम शिक्षित है, मैंने जैसे कहा उन्हें आंगनवाड़ी दीदी, ANM दीदी ऑलरेडी प्रिपेयर करके भेजती हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको रीअश्योर करें, थोड़े बहुत उनके सवालों के जो जवाब है, शंकाओं के जवाब दें। और कई बार ऐसा होता है कि पहली बारी में वो संतुष्ट नहीं होते हैं, अगल बगल भी पूछते हैं, अपने नेबर्स को पूछ लेते हैं, दूसरे जिस बच्चे के टीका लगा होता है उसकी माँ से भी बातचीत कर लेते हैं। तो ये जो थोड़ा सबसे बतिया लेते हैं ना, तब लगता है कि इनको अब लग जाना चाहिए बच्चे को। तो ऐसे लोगों को हमें थोड़ा सा प्रयास करके रीअश्योर करना पड़ता है।
2: मैम, एक चीज है कि मुझे टीके की जानकारी है और एक चीज है कि मुझे टीके की समझ है, दोनों में अंतर है थोड़ा।
3: बहुत बड़ा अंतर है रंजना। जानकारी है वो तो चारों तरफ से उनको आते रहते हैं कि मेरे बच्चे को पोलियो का टीका लगना है, ये हुआ जानकारी, मेरे बच्चे को टीकाकरण होना है, किस उम्र पे पोलियो लगना है, कितने बूंद पिलाने हैं, उसको पिलाने के बाद बच्चे के साथ कोई ऐसी बात तो नहीं होगी जिसकी समझ हमें होनी चाहिए, बुखार तो नहीं आएगा, कोई और परेशानी तो नहीं होगी, मेरा बच्चा रोएगा तो नहीं। ये होती है जानकारी कि अगर ऐसा होता है मुझे क्या करना है, किसके पास जाना है, दवा क्या करनी होगी। तो ये होती है जानकारी। ये तो ठीक है, समझ है कि होना है टीकाकरण, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जब उनको जानकारी पूरी समझदारी के साथ समझाई जाए तब उनके जहन में ये होता है कि हाँ टीकाकरण होना है।
2: इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मैम, आप डॉक्टर हैं, आपके पास जब लोग आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझा ले जाती हैं क्योंकि आप सब कुछ अच्छे से खुद जानती हैं और आपको पता है कि किसको कैसे समझाना है। लेकिन समुदाय स्तर पे जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, वो जब काउंसलिंग करते हैं तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके पास बिल्कुल ब्लंट सवाल आते हैं, है ना, क्योंकि सबसे पहला उन्हीं को झेलना है, माँ को तैयार भी उनको करना है, माँ को हिचकिचाहट है तो वो भी उन्हीं को दूर करनी है, और उनका अपने संदेश भी बहुत सही होने चाहिए जिससे वो कन्विंस हो सके और आप तक, आप मतलब टीका लगवाने के लिए आ सके। तो उनके लिए कोई मतलब कुछ टिप्स देंगी कि किस तरह से वो लोगों से बात करें, वो मतलब स्पष्ट भी हो संदेश उनका और वो पेरेंट्स को भी अहमियत उसकी समझ में आए। होता क्या है ना, मतलब मेरे घर वाले अगर मुझे समझा रहे हैं तो मुझे उतनी वैल्यू नहीं समझ में आती जितना आप मुझे समझाएंगी। वही हाल आशा दीदी और हमारी आंगनवाड़ी दीदी और ANM की भी होती है क्योंकि वो रोज हमसे मिलती हैं। तो उनके लिए मैं जानना चाहूंगी, मतलब उनको आपकी तरफ से क्या चीजें उनको इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए जिससे लोग टीकाकरण के लिए तैयार हो।
3: आशा दीदी लोग जब घर घर जाती है ना, दस्तक एक चलता है कि वो आपके बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं, नया बच्चा हुआ उनके घर में जाके उनको उन लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, अरे बिटिया हुई है वेरी नाइस, लड़का हुआ है बहुत बढ़िया। तो वो एक आशा दीदी के साथ ऑलरेडी विलेजेस में, गांव में, घरों में माओं का, दादियों का, चाचियों का, सबका एक अलग सा रिश्ता बना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कहीं कोई मौत हो गई या कहीं कोई बीमारी हो गई तो वो लोग हिचकिचाते हैं उसमें भी। आशा दीदी इज ए वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन उस समय कि, और पहली बार में वो नहीं कर पाएगी, उसको बार बार बार बार जाना पड़ेगा। तो पहले ही समय की वो रिएश्योर कर देगी और हो जाएगा ऐसा नहीं मानना पड़ेगा उसको। पहली बार जाके कि कैसे हो कैसे नहीं हो, बच्चे के बारे में खबर लेना, अच्छा ये हो गया है, दूसरी बार में जाके तुम्हारे बच्चे को ऐसा हुआ था ना, अब कैसा है, तो तीसरी बार में जाके इसका तो एक टीकाकरण है, तुमने कितने बच्चे हैं, तुमने इनको लगाया है, ये किया है, तो फिर वो बाकी घर के बच्चों के लिए भी बात करना। ये शायद चौथी पांचवीं बार में ऐसा होता है कि आशा दीदी ये कम्युनिकेट कर पाती हैं कि आप लोग जो हैं अपने बच्चे का टीकाकरण कर लीजिए। तो बच्चे की खबर लेने से शुरू करके बच्चे के बारे में बताना और बार बार जाके माँ को रीअश्योर करना और टीके के बारे में बताना, अच्छा फलां को और अगल बगल के जो लोगों को टीका लग रहा है उनके बारे में भी जानकारी देना, अरे फला मौसी के बच्चे को टीका लगा था देखिए कितना बढ़िया तंदुरुस्त है, और फला मौसी के नहीं लगाया था उनको तो दस्त आ गए भाई। तो इस तरह से आप दूसरे लोगों की कहानियां बताकर भी उनको रीअश्योर कर सकते हैं।
2: बिल्कुल मैम, अच्छी चीज है। आशा दीदी लोग जो भी हमारे प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं, जब उनके पारिवारिक रिश्ते भी बन जाते हैं सभी जितने भी उनके लाभार्थी होते हैं उनके साथ, और अलग अलग उदाहरण देके वो दूसरों को, मतलब एक परिवार अगर तैयार हुआ है तो उनके लिए एक उदाहरण होता है कि वो बाकी परिवारों के लिए करते हैं। इसमें क्या जो समुदाय का वृहद, मतलब इनकी तो एक तरह से कहते हैं ना तुम्हारी तो ड्यूटी है तो तुम टीका कर रही हो, और वो करती भी है, लेकिन और भी लोग हैं जो इनको सहयोग कर सकते हैं। आपको लगता है समुदाय में टीकाकरण के विषय में भी जैसे एक तो हम लोग जिस तरह से रेडियो पे अभी बात कर रहे हैं, प्रचार प्रसार के साधन होते हैं, गांव में और भी लोग होते हैं जो जिनको इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो आप मतलब कुछ बताना चाहेंगे इस पे कि कैसे लोगों से वो लोग सहयोग ले सकती है अगर कोई परिवार नहीं तैयार है, क्योंकि हिचकिचाहट दूर करना बहुत आसान चीज नहीं होती, वो भी एक बच्चे के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल होता है। अगर नहीं मेरे से तैयार हो रहा तो मैं किसकी मदद लूं।
3: रंजना, जब हम लोगों ने न्यूमोकोकल वैक्सीन की लॉन्च करी थी तो ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आई थी, नए वैक्सीन को लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जिन लोगों से हमने गांव में लिया वो थे गांव के प्रधान। प्रधान साहब को सब लोग अगर प्रधान ने कह दिया तो ठीक ही होगा, ये रवैया रहता है। तो हमारे साथ ये बहुत मदद हुई कि कई गांवों में प्रधानों ने हमारी बड़ी मदद की कि उन्होंने कहा कि नहीं ये वैक्सीन ठीक है, आप सबको जाके टीकाकरण करवाना चाहिए। कई जगह हमें मस्जिद जाना पड़ा, वहां के मौलानाओं से बात करनी पड़ी, कई जगह स्कूलों में जाना पड़ा, वहां के प्रिंसिपल से बात करनी पड़ी। तो ये कई लोग होते हैं जो पीपल ऑफ अथॉरिटी होते हैं उस जगह पर, इन लोगों से बात करने से कई बार हमारी समस्याओं का समाधान होता है, लोग आगे आते हैं और ये मानते हैं कि जब ये इन्होंने कह दिया तो सही ही होगा, और हम तब टीकाकरण आगे स्मूथली बढ़ता है।
2: तो मैम अच्छी चीज है कि अगर प्रधान है हमारे बाकी जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इनको सहयोग करेंगे तो हम जो हिचकिचाहट होती है इनको समझाने में, समझा के टीकाकरण करवाने में उसमें मदद मिलेगी। आपको क्या लगता है कि कुछ और चीजें भी, कुछ और प्लेटफॉर्म हो सकते हैं जो हमारे एक होते ना कहते हैं एंट्री पॉइंट होता है परिवार का विश्वास जीतने के लिए, या दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगी कि क्या टीकाकरण के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो पेरेंट्स को नवजात के संबंध में ध्यान रखनी चाहिए?
3: दूसरे सवाल का पहले जवाब दूं मैं आपका कि नवजात जो होता है ना उसका पहला टीकाकरण माँ का दूध होता है, क्योंकि माँ के शरीर से कहते हैं ना माँ का दूध पिया हो तो सामने आ जा, तो माँ का दूध जो होता है उसमें से माँ की इम्यूनिटी बच्चे में ट्रांसफर होती है, कई विटामिन्स हैं, कई इम्यूनोग्लोबुलिन जो रक्षात्मक तंत्र होते हैं वो चीजें बच्चे में जाती हैं। सो जिन बच्चों ने माँ का दूध नहीं पिया है वो बच्चों के

0: बहुत अच्छे से हमारा टीकाकरण हो गया बच्चे का। दूसरी बोलेगी, अरे मैं तो देर हो गया, मैं तो लगवाया नहीं, अरे पोलियो का टीका छूट गया, रोटा वायरस का टीका छूट गया, बच्चे को बड़े दस्त हो रहे हैं। तो वो माँ की समझदारी पे है कि कौन सा मैसेज वो उसमें से लेती है कि टीकाकरण हुआ तो हमारा बच्चा स्वस्थ है। और इंसेंटिव क्या रहता है कि हमें राशन लेना है, जाति इसलिए है कि हमें राशन लेने जाना है, और वहां जाके उसका दूसरे लोगों के साथ एंगेजमेंट होता है, दूसरे लोगों के साथ बातचीत होती है, और फाइनली ये बातचीत जो है उसको एक बिहेवियरल चेंज कराती है। तो उसके बिहेवियर में ये चेंज होता है कि हाँ हमें टीकाकरण करवाना चाहिए। तो वहां दूसरों से जब बातचीत करती है, जो उसके मन में शंकाएं होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। इसलिए ये एक एंट्री पॉइंट होता है जहां पर माँ ये हाँ या ना सोचती है कि हम टीकाकरण कराएं या ना कराएं, गई वो राशन के लिए होती है। फिर जो हमारे VHNDs होते हैं उसमें भी यही होता है कि पोषक तत्वों के बारे में बताया जाता है, पर कई बार ये भी उसमें बातें होती हैं कि फलां के बच्चे को लगवाया था देखो और फलां ने नहीं लगवाया देखो, आशा दीदी ने बहुत डांट लगाई कि समय पे टीकाकरण नहीं हुआ। तो ये जो डिलेज करते हैं, मिस करते हैं टीकाकरण, इसके बारे में भी उनको ज्ञान मिलता है कि नहीं करना चाहिए हमें। और आउटराइट जिनमें रिफ्यूजल होता है, जो कि बहुत कम होते हैं कि हम नहीं करवाएंगे, वो वाले बहुत डिफिकल्ट केस होते हैं। वरना थोड़ा आप अगर रिएश्योर करो, समझाओ, उनके साथ एंगेज करो, तो बहुत समझदार है माताएं, क्योंकि हर माँ को चाहिए कि हमें अपने बच्चे को प्रोटेक्शन देना है, माँ तो माँ ही होती है।
1: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपको दिक्कतें हो रही हैं कोई पेरेंट्स को समझाने में, तो ये प्लेटफॉर्म्स आप आंगनवाड़ी केंद्र उनको ले जा सकती हैं, VHND के सेशन में उनको ले जा सकती हैं, या आप किसी ऐसे लाभार्थी के घर भी ले जा सकती हैं जिन्होंने अपने बच्चों का पूरा टीकाकरण कराया है, और उन्होंने अगर टीकाकरण के बाद बुखार आया है तो उसको कैसे मैनेज किया वो समझने के लिए भी हो सकता है, या आप छोटी छोटी क्लिप्स बना के ना, वीडियो क्लिप्स भी आप लोगों को मिलती है वो भी दे सकती हैं। बहुत अच्छी मैम। एक और चीज में, मतलब अब हम अंत में आ रहे हैं अपने, अगर इस व्यवहारिक यात्रा को समझे हम, तो ये क्या यह कहना सही होगा कि अधिकांश परिवार पूरी तरह इनकार करने के बजाय हिचकिचाहट से स्वीकृति की ओर आगे बढ़ते हैं? यह यात्रा आमतौर पर कैसी दिखती है, किस बिंदु पर डर भरोसे में बदलना शुरू होता है?
0: बहुत अच्छा सवाल है आपने कहा। देखिए, इंसान का जो व्यवहार होता है ना, वो कई चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। तो जैसे कि इन माओं में होता है कि पहले डरते डराते जाती हैं, उसके बाद एक कंडीशनल एक्सेप्टेंस होता है कि हम सोच रहे हैं। तो जितनी बार हमारा या आंगनवाड़ी दीदी का या किसी हेल्थ वर्कर का उनसे कांटेक्ट बनता है, तो डर के बाद सोच रहे हैं के बाद एक कॉन्फिडेंट एक्सेप्टेंस आता है कि हाँ लगवाएंगे। उस दौरान अगर उनको आप बार बार बार बार रिएश्योर करो, मतलब डर जो है ना उसको आउट नंबर करना पड़ेगा आपको किससे, ना बार बार रिएश्योर करके कि हाँ लगवाना है। तो जैसा मैं आपको पहले भी बताया कि 3-4 बार ये सब एड्रेस करने के बाद वो डर से लगवाएंगे तक पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद अगर सेफ एक्सपीरियंस हुआ तो अगली बार जरूर आएंगे टीके के लिए। तो आपको जो है ये देखना है कि जो सोर्स उनको रीअश्योर कर रहा है, जो उनको बता रहा है, जो हेल्थ वर्कर बात कर रहा है, वो ट्रस्टेड हो। सो अगर बुखार में कोई भी अनसर्टेनिटी रहे कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, वो बदल जाए कि उसमें नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, आपका बच्चा प्रोटेक्टेड है, हम टीकाकरण करेंगे, और सिर्फ टीकाकरण नहीं करेंगे, उसके आगे भी कुछ भी हुआ तो उसके लिए हम मौजूद हैं, हम रहेंगे, आप कभी भी हमारे पास आ सकते हो। तो ये रिएश्योरेंस जब मिलता है कि पहले टीकाकरण में और उसके बाद तक हमारे साथ ये हेल्थ वर्कर हैं, तब वो डर धीरे धीरे चला जाता है। और एक बार टीकाकरण हुआ और सेफ एक्सपीरियंस हुआ तो उसके बाद तो दोबारा तो आएगा ही आएगा।
1: तो हमें टीकाकरण करने वाले को भी भरोसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल टीके सुरक्षित हैं और बच्चे को कुछ नहीं होगा, और टीका करवाने वाले माँ बाप को भी पूरा विश्वास, क्योंकि जब विश्वास करने लगते हैं हम चीजों पे तो हमारा डर दूर होना शुरू होता है और फिर वो हमारे व्यवहार में आ जाता है और तभी वो हमें फायदेमंद भी होता है। इसी के साथ मैम हम अपने पॉडकास्ट के अंत में हैं, फिर से एक बार समराइज करते हैं इस चीज को, और अगर संक्षेप में कहना हो तो इन समुदायों में टीकाकरण को लेकर हिचकिचाहट वास्तव में किस बारे में, हम रिकैप करेंगे मैम, है ना, सीधे सीधे मैं पूछना चाहूंगी कि हिचकिचाहट किस चीज को लेकर होती है, स्वीकृति बढ़ाने में सबसे ज्यादा कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, और तीसरी चीज जो लोग हमारे सुन रहे हैं उन परिवारों के बारे में क्या

0: समझना चाहिए वो क्यों हिचकिचाते हैं। मतलब ये मैं डॉक्टर्स के लिए भी पूछ रही हूँ कि जब आता है कोई पेरेंट तो उसको एक होता ना, मेरी सुन लोगे आप तब मैं आपकी सुनूंगी, क्योंकि मेरे अंदर का जब सब कुछ बाहर आ जाएगा तभी शायद आप जो मुझे ज्ञान देंगी वो अंदर जाएगा। तो तीन चीजें हैं मैम, हिचकिचाहट जो होती है वो वास्तव में किस चीज को लेके होती है, स्वीकृति बढ़ाने में कौन से फैक्टर्स काम आते हैं, और तीसरी चीज हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है जो टीकाकरण दे रहा है उसका क्या व्यवहार होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही आपने पूछा, उत्तर भी आपने शायद बता ही दिया होगा, फिर भी मैं बता रही हूँ कि डर एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से टीका नहीं लगवाते। डेली वेजेस में इनकम का लॉस होता है इसलिए कई बार नहीं बताते हैं। पिछले एपिसोड में कहीं उनको कोई एक गलत एक्सपीरियंस हो गया होगा, या ये डर, मैंने सबसे पहले बोला है डर कि मेरे बच्चे को कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात होती है जो रोकती है, हिचकिचाहट जिसकी वजह से होती है। तो एक चीज जो डिफरेंस ला सकती है वो है जैसा आपने कहा कि उनकी बात को सुनना। उनकी बात को सुनना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वो अपने डर को जब बाहर निकालेंगे तभी हम समाधान बता पाएंगे। उनकी डर को सुनना और उसके बाद देखना कि कहां क्या हो सकता है, उसको आजमाना, उनको देखना होता है कि हम आजमा के तो देखें, और उसके बाद तब उसको मानना। ये एक पूरा सर्कल होता है जिसके थ्रू वो माँ बाप जाते हैं। तो जो भी हेल्थ वर्कर उनके साथ होता है उसको होम विजिट पे उनकी बातों को सुनना, और वैक्सीन के लगने पर वैक्सीन के बाद भी उपस्थित रहना, और सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन से बुखार आएगा ये पहले से एक्सप्लेन करना। जब पहले से इंसान को पता होता है ना तो वो इतना नहीं डरता, लेकिन जब उसको कुछ पता ही नहीं है, अनसर्टेन है, तो वो ज्यादा डरता है। मतलब आप सोचो आपको कल ऑफिस जाना है, तो आप ठीक है कल ऑफिस जाना है, ये करना है और कल ऑफिस जाना है। जब आपको पता ही नहीं है कल क्या लेके आएगा, कोविड टाइम्स में कितना अनसर्टेनिटी हुआ था, कितना डर मन में बैठ गया था कि कल हो ना हो, तो ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। पहले ही उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाँ इस टीकाकरण से बुखार आ सकता है, इस टीकाकरण की वजह से आपको ये परेशानी हो सकती है, ऐसे में आप हमारे पास आइए, या ऐसे में ये दवा हम आपको दे रहे हैं इसे खिलाइएगा। तो वो जब रिएश्योर हो जाता है ना तब वो पेरेंट कभी नहीं हिचकिचाएगा। एक एक्सपीरियंस अच्छा तो सब अच्छा, पहल अच्छी हो जाए ना तो सब अच्छा हो जाता है।
0: बहुत अच्छी बात कही मैम आपने, पहल तो करिए अच्छा ही होगा। और मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगी, पॉडकास्ट से पहले मैडम से मेरी बात हो रही थी और मैम ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज बोली थी कि टीकाकरण जो है ना वो सिर्फ एक माँ की जिम्मेदारी नहीं है, उस बच्चे का अधिकार भी है। तो हमें हर बच्चे को उसका अधिकार देना है, सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे का पूरा पूरा टीकाकरण हो।
1: डरिए नहीं, हम आपके साथ हैं।
0: मैम अंत में मैं चाहूंगी आप एक संदेश के साथ हम इस पॉडकास्ट को खत्म करना चाहेंगे, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे हेल्थ वर्कर्स के लिए, सबके लिए एक संदेश।
1: अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, सब आगे आए माता पिता, अपने बच्चे को टीकाकरण करवाएं, क्योंकि स्वस्थ बच्चा स्वस्थ भविष्य। तो अगर आप अपने बच्चे के भविष्य को स्वस्थ देखना चाहते हैं टीकाकरण जरूर करवाएं।
0: बिल्कुल, तो धन्यवाद मैम, आपने इतने अच्छे से हमें बताया, इतनी सरल भाषा में सहज तरीके से हमें बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मुझे पूरा विश्वास है कि पेरेंट्स आगे आएंगे, सभी अपने बच्चों का टीकाकरण कराएंगे, उनको उनका अधिकार दिलाएंगे। थैंक यू वेरी मच।
2: तो दोस्तों, उम्मीद है कि सेहत सही लाभ कई का ये प्रयास आपके जीवन में जागरूकता और विश्वास की एक नई किरण लेकर आया होगा। याद रखिए, सही जानकारी ही बेहतर स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। टीकाकरण न केवल आपको बल्कि आपके परिवार और पूरे समाज को सुरक्षित रखने का एक मजबूत कवच है। इसी संदेश के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें, क्योंकि जब सेहत सही होती है तो लाभ सच में कई होते हैं। नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। यहां हम बातें करते हैं सेहत की, घर परिवार की और उन सवालों की जो अक्सर हमारे मन में तो आते हैं पर जुबान पर नहीं आते। आज का विषय है गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव और HPV वैक्सीन को लेकर फैलती अफवाहें। कई घरों में ये बात अभी नई है। कहीं कहा जाता है कि ये टीका जरूरी नहीं, कहीं कहा जाता है कि इससे शरीर पर असर पड़ता है, और कहीं कोई व्हाट्सएप पर वीडियो भेज देता है तो पूरा घर असमंजस में पड़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य किसी फॉरवर्ड के भरोसे छोड़ सकते हैं, या हमें सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए। आज हमारे साथ हैं हमारी अपनी टीकन देवी, जो हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाती हैं। और थोड़ी देर में हम सुनेंगे एक मां की कहानी, डर, उलझन, गुस्सा और फिर धीरे धीरे भरोसे तक पहुंचने की कहानी। टीकन भाभी, स्वागत है।
1: धन्यवाद। और मैं तो यही कहूंगी कि किस भी नई दवाई, तकनीक या सही सुझाव के बारे में डर होना गलत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी पाना, डॉक्टर के पास जाना या स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके डर कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम आज HPV वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं तो माँ बाप डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की चिंता होती है कि कई लोग अपने अपने घरों में डर का हाथ पकड़कर बैठ गए हैं और अफवाह पर विश्वास कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि सच कहीं बाहर इस सब अफवाहों के बीच छिप गया है। हम आज उसी सच को घर के भीतर बुलाएंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लीजिए एक साधारण सा घर है, शाम का समय है, खाना बन रहा है, बेटी स्कूल से कोई जानकारी लेकर आई है। माँ थकी हुई है लेकिन मन में एक और थकान है जो सुन सुनकर जमा हुई है। उस घर में आपको ले चलता हूं।
1: बिल्कुल, चलिए चलते हैं उस घर के भीतर। अरे टीकन भाभी, बड़े सही वक्त पर आई है। देखिए तो जरा, पायल अभी स्कूल से आई है और बस ये कागज मुझे पकड़ाकर चली गई ट्यूशन के लिए। हाँ सुनीता, मुझे इस कागज की जानकारी है, तभी तो मैं आई हूं। ये कागज जरा अलग है। स्कूल में आशा दीदी बता रही हैं कि 14 साल की लड़कियों के लिए HPV का टीका लगेगा। मुझे लग रहा था कि तुम परेशान हो जाओगी। तुम्हारे पति तो दूसरे प्रदेश में जंगलों के बीच सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, रोज उनसे बात भी नहीं पाती हो, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुमसे बात कर लूं।
2: अरे भाभी, ये HPV वे या जो भी नाम ही इसका, एक मुसीबत हो गई है।

0: तीन दिन से न जाने कितने तो मैसेज आ चुके हैं, कितने फोन आ रहे हैं। को कह रहा है सरकारी टीका है लगवा दो, कुछ कह रहे हैं अरे बिल्कुल मत लगवाना, पता नहीं क्या असर हो। अब तो बैग छे इतने छोटे हैं। कुछ लोगों ने तो फोन पर वीडियो भेज दिया, कह रही थी इससे लड़कियों के पीरियड्स खराब हो जाते हैं। कोई कह रहा है बांझ जो जाएंगी बेटियां, किसकी सुने। ये तो बहुत बड़ा निर्णय लेना होगा। और तुमने वीडियो देखा?
1: देखा।
0: सफेद कोट पहनी एक औरत बोल रही थी कि मेरी क्लिनिक में ऐसे ऐसे केस आए। अब हम कैसे माने क्या सही है क्या गलत, हम डॉक्टर थोड़े हैं।
2: सुनीता तुम तो पढ़ी लिखी हो, यही पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा फायदा होता है। जब कोई बिना ठोस स्रोत के बस सफेद कोट पहनकर कैमरे में देखकर कुछ बोल दे तो वो सच नहीं बन जाता। हमारे पास क्या तुम्हारे अपने सामुदायिक रेडियो पर जो सामग्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जागरूकता सामग्री में है उसमें साफ कहा गया है कि क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन की एक ही डोज प्रभावी है, ये मासिक धर्म पर असर नहीं डालती और बांझपन का कारण नहीं बनती। ये जानकारी वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन और निगरानी पर आधारित है। लेकिन सुनते हैं सुनीता के मन में और क्या चल रहा है।
0: टीकन भाभी एक बात कहूं, हमारे यहाँ जो भी नई चीज आती है पहले हम साधारण लोगों पर और गरीबों पर ही क्यों आजमाते हैं, ये भी मन में आता है। ऊपर से ये भी सुनने को मिला कि पहले तीन डोज लगती थी, अब एक बोल रहे हैं। कोई कह रहा है ये जल्दीबाजी है। तुम्हारा सवाल ठीक है और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जवाब सही जगह से लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की सामग्री कहती है कि अब जो क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन दी जा रही है उसकी एक डोज प्रभावी मानी गई है। ये कोई हवा में लिया फैसला नहीं है, दुनिया भर में शोध, सुरक्षा निगरानी और विशेषज्ञों की सलाह के बाद ये नीति बनी है। और ये वैक्सीन कोई आज की चीज नहीं है, ये दुनिया में 2006 से इस्तेमाल हो रही है। 100-125 नहीं, 160 से ज्यादा देशों में इसका इस्तेमाल हुआ है। इतने साल की निगरानी के बाद ही इसे सार्वजनिक कार्यक्रम में लाया गया है।
1: पर देखो हमें तो यही डर लगता है कि कहीं बेटी के आगे चलकर शादी ब्याह बच्चा होने में कोई दिक्कत ना हो जाए।
0: यही अफवाह सबसे ज्यादा फैल रही है, पर मंत्रालय के मिथक बनाम तथ्य वाले संदेशों में साफ लिखा है HPV वैक्सीन से बांझपन नहीं होता, बल्कि ये भविष्य को मजबूत करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। और सिर्फ पोस्टर नहीं, जिन्होंने वैक्सीन ली उनकी गवाही भी है। किसी ने 13 साल की उम्र में वैक्सीन ली और कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। एक और महिला की कहानी है, उन्होंने 2010 में वैक्सीन ली थी और आज वो माँ है। यानी जो डर फैलाया जा रहा है उसका आधार नहीं है।
2: यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। आज माँ है वाला प्रमाण सिर्फ भावनात्मक नहीं, अफवाह के एक बड़े झूठ को तोड़ता है, और यही SSLK की ताकत है। मन की घबराहट को तथ्य और अनुभव दोनों से संभालना।
1: अच्छा मान लिया कि बांझपन वाली बात झूठ है, पर पीरियड्स के बारे में, लड़कियों का शरीर नाजुक होता है, कोई गड़बड़ हुई तो?
0: देखो इस पर भी साफ जानकारी है, HPV वैक्सीन मासिक धर्म को प्रभावित नहीं करती और पीरियड्स के दौरान भी ये सुरक्षित है। पीरियड्स बिगड़ जाएंगे वाली बात अफवाह है। जब डॉक्टर, मंत्रालय और वैज्ञानिक सामग्री एक ही बात कह रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया की बात क्यों माने?
1: इसलिए कि सोशल मीडिया वाले डर जल्दी बेच देते हैं, सच तो धीरे धीरे समझ में आता है।
0: बिल्कुल, अफवाह तेज भागती है, सच धीरे चलता है, इसलिए हमें सच को बैठकर सुनना पड़ता है। तुम अपनी बेटी का चेहरा देखो और सोचो, क्या उसे एक ऐसे कैंसर से बचाने का मौका छोड़ दोगी जो रोका जा सकता है?
2: ठीकन भाभी, यही तो जरूरी सवाल है। हमारे पास उपलब्ध सार्वजनिक जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है कि सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये उन कुछ कैंसरों में है जिनकी रोकथाम संभव है। HPV संक्रमण अक्सर बिना लक्षण फैलता है, पर समय के साथ गंभीर रूप ले सकता है। वैक्सीन उस कहानी को शुरू होने से पहले बदल सकती है।
1: एक बात और, अगर ये इतना अच्छा है तो खर्चा कितना आएगा? सच कहूं टीकन भाभी, दवा इलाज का नाम सुनते ही जेब का डर भी लगने लगता है। ये सवाल भी बड़ा है।

0: जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा इलाज मतलब महंगा इलाज। लेकिन ये वैक्सीन 14 साल की लड़कियों के लिए नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है, यानी मुफ्त। यही नहीं, कई संदेशों में बार बार कहा गया है, सुरक्षा किसी की जेब पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। मुफ्त? सच में? हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। और जहाँ व्यवस्था हो वहाँ यूविन जैसे प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट की भी जानकारी दी जा रही है। मगर यदि ये सब समझ में ना आए तो सीधा अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पीएचसी, सीएचसी या जिला अस्पताल में पूछो। डॉक्टर से पूछो, एएनएम से पूछो, आशा से पूछो। फॉरवर्ड भेजने वाले से क्यों पूछना है? सुनने में आसान लगता है, पर घर वाले भी तो माने। कोई सास कुछ कहेगी, कोई पड़ोसन कुछ, फिर पति कहेगा, देख लो तुम जैसा ठीक समझो। लेकिन जिम्मेदारी माँ के सिर पर आ गिरती है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ, माँ को अकेला मत छोड़ो। ये सिर्फ माँ का फैसला नहीं, परिवार की समझ का फैसला होना चाहिए। पर अगर परिवार उलझ रहा है तब भी माँ को तथ्य पकड़ना चाहिए। देखो, कोई भी समझदार फैसला तीन चीजों पर टिकता है, वैज्ञानिक प्रमाण, डॉक्टर की सलाह और विश्वसनीय सरकारी जानकारी। बाकी सब शोर है।
1: श्रोताओं, जरा सोचिए, यदि किसी घर में बच्ची के लिए स्कूल से सूचना आए और उसी शाम मोबाइल पर डर फैलाने वाला वीडियो आ जाए तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा जिसकी आवाज आप ज्यादा सुनेंगे। इसलिए सही जानकारी को जोर से बोलना पड़ेगा।
2: लो, फिर मैसेज आया। पड़ोस वाली कमला लिख रही है, मत लगवाना, हमारी रिश्तेदारी में किसी को बुखार आ गया था। अब बताओ ये क्या माने?
0: कभी कभी हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, लालपन जैसी हल्की प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यही हर इंजेक्शन में संभव है। इससे ये नहीं साबित होता कि टीका खतरनाक है। बड़ी बात यह है कि गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ बताए गए हैं और सुरक्षा निगरानी लगातार होती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं, निगरानी, प्रमाण, समीक्षा। अफवाह क्या करती है? एक घटना उठाती है, उसे बढ़ाकर पूरा सच बना देती है।
2: अच्छा, मान लो मैं कल स्वास्थ्य केंद्र चली गई, वहां क्या पूछूं?
0: सीधा पूछो, मेरी बेटी 14 साल की है, क्या एचपीवी वैक्सीन यहाँ मुफ्त उपलब्ध है? क्या ये एक डोज है? क्या इसे पीरियड्स के दौरान भी दिया जा सकता है? क्या इससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? डॉक्टर तुम्हें साफ जवाब देंगे। और अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी।
2: तुम चलोगी तो हिम्मत रहेगी। सच कहूं, मुझे अपनी बेटी के लिए डर तो है, लेकिन मुझे अपनी अज्ञानता से भी डर लगता है, कहीं मैं ही गलत फैसला ना कर दूं।
0: यही तो समझदारी है, जो नहीं पता उसे मान लेना कि मुझे नहीं पता, उसके बाद सही जगह से जानना। कई लोग तो यही गलती करते हैं कि बिना समझे जोर से बोलने लगते हैं और जोर की आवाज को सच समझ लिया जाता है।
1: इसीलिए सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम बिल्कुल सही जानकारी देता है और दूरदृष्टि के साथ आपके लिए कार्यक्रम लाता है। ये कार्यक्रम खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जो दुविधा में होते हैं, जिनमें सरकारी महकमों, जानकारियों, मुफ्त इलाज के प्रति भ्रम होता है और साथ ही डर होते हैं। अपने डर को नकारिए मत, उसे सही रास्ता दीजिए, परंतु उस रास्ते के अंत में डॉक्टर हो, डेटा हो और भरोसेमंद जानकारी हो, न कि अफवाह। सही जानकारी ही लाभकारी होती है।
2: टीकन, तुमने एक बात कही, सर्वाइकल कैंसर रोका जा सकता है। ये बात मेरे मन में अटक गई। हम तो कैंसर का नाम सुनते ही सोचते हैं कि बस अब बचना मुश्किल।
0: इसलिए जागरूकता जरूरी है। महिलाओं के लिए आगे चलकर नियमित स्क्रीनिंग भी महत्वपूर्ण है। जागरूकता सामग्री में साफ कहा गया है, कम उम्र की लड़कियों के लिए टीकाकरण और महिलाओं के लिए समय समय पर जांच, दोनों मिलकर सुरक्षा की दीवार बनाते हैं। छोटी उम्र में सुरक्षा, बड़ी उम्र में समय पर पहचान, यही समझ घर घर जानी चाहिए।
2: यानी मेरी बेटी के लिए टीका और हमारे लिए जांच की समझ।
0: बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सेहत को अक्सर घर में आ

0: आखिरी नंबर मिलता है। पहले सबका खाना, सबका काम, सबकी चिंता, पर अपनी सेहत के बारे में कब सोचती हैं? जब बीमारी बढ़ जाती है। ये बदलना होगा।
1: यही SSLK का मकसद है, सिर्फ जानकारी देना नहीं, घरेलू सोच बदलना। अब सुनते हैं सुनीता ने क्या फैसला लिया।
2: टीकन भाभी, मैंने ठान लिया है, कल सुबह स्वास्थ्य केंद्र चलेंगे। वहां डॉक्टर से बात किए बिना मैं ना हाँ कहूंगी।
3: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA Honors Hindi, BA Honors English, MA Hindi, MA English। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
3: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
4: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: एंड हियर वी गो आरजे वंशी इन द स्टूडियो। हे हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वंशी और लेकर हाजिर हूं आपके वाला प्रोग्राम, नाम है जिसका सेहत सखी और संसार। 9:10 हो गए हैं, 12 सितंबर आज की तारीख है और अभी 10:11 9:11 हो गए हैं, 12 सितंबर आज की तारीख है, शनिवार आज का दिन है, गुड वाली मॉर्निंग है, गुड वाली वाइब है और गुड वाला फॉर्मूला ऑफ द डे भी है मेरे पास, जो कुछ यूं कहता है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता पर भविष्य अभी पूरी तरह से आपके हाथ में है। यानी के अतीत में की हुई गलतियां, असफलताएं या नुकसान अब बदले नहीं जा सकते। बीते हुए समय पर बार बार पछतावा करना केवल आपकी वर्तमान ऊर्जा और मानसिक शांति को नष्ट करता है। अतीत को सुधारने का एकमात्र तरीका ये है कि आप उससे सीख लें और आगे बढ़ें। इसी के साथ दोस्तों, आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आपके साथ अतीत में आखिरकार हुआ क्या है, बल्कि इस बात पर करता है कि आज आप क्या कदम उठा रहे हैं। आपका आज का हर छोटा प्रयास, सही निर्णय और अनुशासन आपके कल की दिशा तय करता है। इसीलिए अपने आज पर काम कीजिए, कल की चिंता छोड़ दीजिए और कल की चिंता में मत रहिए। और मैं तो यही कहूँगी कि पछतावा छोड़ें, सीख अपनाएं, पुरानी गलतियों को खुद पर बोझ न बनने दें और उन्हें एक अनुभव मानकर जीवन में आगे बढ़ें। फिलहाल ये बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, ओनली ऑन आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM। आंदोलन मूवी का ये गाना। कुछ कहना है आपको, कुछ बताना है तो बिल्कुल मुझसे जुड़ सकते हैं 9639012111 नंबर के माध्यम से। और दोस्तों, आज के समय का सही आप उपयोग करें क्योंकि यही भविष्य का आधार प्रस्तुत करता है। जब आप अतीत के चक्रव्यूह से बाहर निकलते हैं तो भविष्य की नई संभावनाओं को देखने का जो नज़रिया है अपने आप बेहतर हो जाता है। तो दोस्तों, ये आप बात हमेशा याद रखें और अतीत में जीना छोड़ दें। जो आज है, रियलिटी है, वर्तमान है, प्रेजेंट है, उसको एक्सेप्ट करना सीखें और उस पर काम करना सीखें, उसको जीना सीखें, isn't it? चलिए फिलहाल ये गाना आपके लिए, उसके बाद I'll be back to you with बहुत सारी बातें।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वंस अगेन वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, बहुत सारी बातें आपसे करने के लिए फिर से आ गई हूँ। 9:26 हो गए हैं और क्योंकि आज की तारीख है 12 सितंबर, तो आज हम बात करेंगे कि 12 सितंबर का दिन क्यों हो जाता है खास और क्या है इसका इतिहास। चलिए इसके इतिहास पर हम नज़र डाल लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 12 सितंबर 1897 को सैन्य इतिहास की सबसे साहसी घटनाओं में से एक सारागढ़ी का युद्ध हुआ था। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, जो कि अब पाकिस्तान में है स्थित सारागढ़ी पोस्ट पर ब्रिटिश भारतीय सेना की 36वीं सिख रेजिमेंट के केवल 21 सिख सैनिकों ने हवलदार ईशर सिंह के नेतृत्व में लगभग 10,000 अफगान कबालियों का मुकाबला किया था। सभी 21 जवान अंतिम सांस तक लड़े और शहीद हो गए। उनकी इस अद्वितीय वीरता के लिए सभी को मरणोपरांत इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो उस समय का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार माना जाता था, उससे सभी को सम्मानित किया गया। इसके बारे में थोड़ी सी बातें और करेंगे लेकिन कुछ देर बाद। बाकी आपको बताऊं कि 11 सितंबर यानी कि कल की तारीख में 1948 को पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के निधन के ठीक एक दिन बाद 12 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद रियासत को भारत संघ में मिलने के लिए ऑपरेशन पोलो यानी सैन्य कार्रवाई की अंतिम योजना को अंतिम रूप दे दिया था। और अगले ही दिन तड़के अभियान को शुरू किया गया जिसका नाम ऑपरेशन पोलो रहा। इसी के साथ आपको बताऊं दोस्तों कि साल 1966 में भारत के महान लंबी दूरी के तैराक मिहिर सेन ने 12 सितंबर 1966 को डैडनल्स दलंड मरु मध्य को तैर करके पार करने का रिकॉर्ड भी कायम किया था। वो ऐसा करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। और इसी के साथ उन्होंने एक ही वर्ष में 5 महाद्वीपों के समुद्रों को तैर कर पार करने का कीर्तिमान भी रचा। तो है ना, कितनी प्राउड वाली बात। दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे यूं ही जारी रहेंगी। आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है तो बिल्कुल मुझसे संपर्क कर सकते हैं आप हमारे नंबर पर, जो कि है 9639012111। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के साथ साथ आप व्हाट्सएप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल राजा मूवी का बहुत ही बेहतरीन सा गाना इन द वॉइस

0: ये है आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
3: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर, गढ़ रोड, किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

हाय एवरीवन, आई एम कपिल गौरी द इंटरनेशनल फैशन शो डायरेक्टर। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 91.0 एफएम। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। आरजे वंशी के साथ।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, 9:50 हो गए हैं, 12 सितंबर आज की तारीख है, और फिलहाल अभी हमने लक्ष्य मूवी का ये बहुत ही प्यारा सा बेहतरीन सा गाना एंजॉय किया। एंड वी वर टॉकिंग कि आज का इतिहास क्या कहता है, आज का दिन क्यों खास हो जाता है, और इसी सिलसिले में हमने सारागढ़ी के ऐतिहासिक युद्ध के बारे में जाना जो कि 1897 में हुआ था, और जाना ऑपरेशन पोलो के बारे में जो कि 1948 में आज ही के दिन हुआ था। इसी के साथ आपको बता दूं कि अंतरिक्ष में सोवियत संघ की बढ़त लूना 2 1959 आज ही हुई थी। तो जरा आपको बता देती हूँ कि ये लॉन्च कैसे हुआ था। 12 सितंबर 1959 को सोवियत संघ USSR ने अपना चंद्रयान लूना 2 लॉन्च किया था। ये पहला ऐसा मानव निर्मित अंतरिक्ष यान बना जिसने चंद्रमा की सतह को स्पर्श किया था। इसने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जारी स्पेस रेस को एक नया मोड़ भी दिया था। वहीं आपको बताऊं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 12 सितंबर 1941 को महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए लंदन पहुंचे थे। और भी बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आज ही के दिन को दर्शाती है और आज ही के दिन में दर्ज है। करूँगी आपसे सारी की सारी बातें। और दोस्तों, फिलहाल ये गाना आपके लिए ताल मूवी से, और आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं। नंबर 9639012111 हो जाता है मेरा, इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं।

0: भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA Honors Hindi, BA Honors English, MA Hindi, MA English। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट. और दोस्तों 10:10 हो गए हैं, 12 सितंबर आज की तारीख है और आज ही के बारे में आपसे ढेर सारी बातें कर रही हूं. दोस्तों आपको बताऊं कि 1398 में तैमूरी राजवंश का आक्रांता तैमूर लंग अपनी विशाल सेना के साथ सिंधु नदी के तट पर पहुंचा था और वहीं 1786 में लॉर्ड कॉर्निवलिस भारत का गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ बनकर भारत आया था. इसी के साथ 1873 में आज ही के दिन दुनिया का पहला व्यवहारिक टाइपराइटर ग्राहकों को व्यावसायिक रूप से बेचा गया. और 1944 की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने पहली बार जर्मनी की भूमि में प्रवेश किया था. 1990 की बात आपको बताऊं तो पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण के लिए 2+4 समझौते पर मॉस्को में हस्ताक्षर हुए, जिससे शीत युद्ध के अंत का मार्ग भी प्रशस्त हुआ था. इसी के साथ 1997 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मार्स ग्लोबल सर्वेयर 43.5 करोड़ मील की यात्रा पूरी कर मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा था. वहीं 2012 में आज ही के दिन दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने सैन फ्रांसिस्को में अपना बहुचर्चित स्मार्टफोन आईफोन 5 लॉन्च किया था आज ही के दिन. अब तो खैर काफी आगे इसकी सीरीज बढ़ चुकी है. इसी के साथ आपको बताऊं कि 12 सितंबर के दिन काफी लोग ऐसे रहे जो प्रसिद्ध हैं और उनका जन्मदिन भी हम मनाते हैं. वहीं आपको बताऊं कि 1898 में बलदेव प्रसाद मिश्रा का जन्म हुआ था. ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, न्यायविद और लोक सेवक रहे हैं. वहीं 1912 में भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और लोकसभा के प्रभावशाली सदस्य फिरोज गांधी का भी जन्मदिन आज ही के दिन मनाया जाता है. वहीं प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह का जन्म आज ही के दिन हुआ था, साल 1917 में. फिलहाल और क्या बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, करूंगी सारी की सारी. बट आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है तो बिल्कुल मुझे बता सकते हैं, कॉल या मैसेज कर सकते हैं 9639012111 पर. इस नंबर पर आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं और इसी के साथ आप प्ले स्टोर के माध्यम से हमसे जुड़ करके अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं. फिलहाल मैं पहुंचा रही हूं आपको 1942 अ लव स्टोरी से बहुत ही बेहतरीन सा गाना. चलिए इस गाने को सुनेंगे साथ में.

दोस्तों आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो, 10:21 हो गए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो और वेलेस डिकेस्ट्रो। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े हुए हैं और सभी गाने आपके नाम आपके पसंद के ही मैं चलाने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आप भी किसी गाने की फरमाइश करना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों ये अगला वाला गाना जो अभी प्ले होगा फ्रॉम द मूवी हम तुम, इस गाने को मैं डेडिकेट करना चाहूँगी डिकेस्ट्रो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ।

0: कम ऑन रिया,
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम है।
0: तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
0: वाओ,
1: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
0: नॉट लिसनिंग टू
1: यू, दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडी।
0: नॉट लिसनिंग,
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: ओके, आई एम नॉट विद हर।
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके, दैट्स इट।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM RJ वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों 10:29 हो गई हैं और फिलहाल हम तुम मूवी का काफी बेहतरीन सा गाना हमने एंजॉय किया। काफी जॉली सा गाना है ना, इसमें कन्वर्सेशन भी है, लड़ाइयां भी है और तकरार भी है। और ये गाना सुनने में जितना प्यारा है उतना देखने में भी बेहतरीन है। इसी के साथ दोस्तों हमने बात कर रहे थे कि आज का दिन क्यों हो जाता है खास, और हमने बात की कि आज के दिन जो जन्मे हैं व्यक्ति जो प्रसिद्ध रहे हैं वो कौन कौन थे, लेकिन कुछ लोग हमें अलविदा भी कहकर गए थे आज ही के दिन। चलिए उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। हिंदी साहित्य के अमर कहानीकार, उसने कहा था कि लेखक यानी कि चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी के नाम से लिखा करते थे, उनका आज ही के दिन निधन हुआ था 1922 में। और बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के संगीतकार जयकिशन 1971 में हमें अलविदा कह गए थे। वहीं स्वतंत्रता सेनानी और गुजरात के तीसरे मुख्यमंत्री यानी हितेंद्र देसाई का निधन भी आज ही के दिन 1993 में हुआ था। विश्व में कृषि क्रांति के जनक

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम

0: पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
2: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
1: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वंस अगेन वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ और इसी के साथ, क्योंकि प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि मेरी आपसे बातें होती ही रहती हैं और मैं आपकी बातें सुनती हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ और मुझसे कहना है, कुछ और मुझसे शेयर करना है तो बिल्कुल मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा नंबर हो जाता है मेरा 9639012111। इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। इसी के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल हैंडल्स पर भी, यानी कि आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, मेटा, एक्स और यूट्यूब पर हमारे आजाद हिंद रेडियो से। बाकी आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर आपको जाना होगा सर्च करने के लिए आजाद हिंद रेडियो और बहुत ही आसानी से आपको हमारा अकाउंट मिल जाने वाला है। बिल्कुल वैसे ही मेटा पर अगर आप आजाद हिंद रेडियो सर्च करते हैं तो आपको हमारा पेज जरूर मिलने वाला है। आप उससे जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए और हम तक अपनी बातें सीधे पहुंचाइए और साथ ही साथ आप बाकी के सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप जा रहे हैं हमारी पहुंच से दूर, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी से दूर और आप तक हमारी रीच नहीं बन पा रही है तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि आपको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, और जानकर आपको बहुत ही खुशी होगी और मुझे भी बताकर ही बहुत खुशी होती है कि मेरठ में ये पहला रेडियो स्टेशन है जिसके पास मोबाइल एप्लीकेशन है और अभी तक ये इकलौता ऐसा रेडियो स्टेशन है जो आपका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए कि आप हमसे हमेशा जुड़े रहें और अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहें, अपनी बातें हम तक पहुंचाते रहें और अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचाते रहें, तो इसी सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये आपके लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनवाया है। तो आप इसको इंस्टॉल करें, हमसे जुड़ जाएं और अपनी बात सीधे हम तक पहुंचाएं, हमसे शेयर करें जो भी आप कहना चाहते हैं। किसी गाने की फरमाइश करनी है तो वो कर सकते हैं, किसी को कोई गाना डेडिकेट करना है तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आप अच्छा लिखते हैं या बोलते हैं तो वो भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ लिखते हैं तो वो जरूर हमें लिख करके भेजिए, हम आपके नाम के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, अगर आप अच्छा बोलते हैं तो आप हमें वॉइस नोट भी भेज सकते हैं अपनी किसी पीस ऑफ राइटिंग या पीस ऑफ आर्ट को लेकर के। बाकी अभी तो इतना ही कहूंगी कि आप इतना प्यार भेजते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिलहाल आपके प्यार को सलाम करते हुए ये गाना आपके लिए लेकर आई हूँ। आप यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दे एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
3: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए, वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313.

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वंस अगेन वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 11:11 हो गए हैं और बहुत बहुत नमस्कार आपका। आप हमसे जुड़ गए हैं सहारनपुर से, कुमारहेड़ा गांव से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, अदीब, नाजिया, आफ्रिया, इब्राहिम, सद्दाम, सब लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। और जब मैं आपके नाम बोलती हूँ ना तो मुझे बड़ा मज़ा आता है क्योंकि राइमिंग से बन जाती है, तो अपने आप में ही बड़ी अच्छी सी मूड हो जाता है। फिलहाल चलिए हम ना बात कर रहे थे आज के दिन के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि आज के दिन हर वर्ष सारा गढ़ी दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं और उन शहीदों को याद करते हैं जो कि सिख रेजिमेंट द्वारा सम्मानित हैं बहुत ज़्यादा। और मैं आपको बता देती हूँ कि इसके पीछे और क्या बात थी। ये दिन सैन्य इतिहास की सबसे असमान और महान लड़ाइयों में से एक माना जाता है। साल 1897 में 36वीं सिख रेजिमेंट, यानी कि वर्तमान में जो चार सिख वाली जो रेजिमेंट है, उसके 21 वीर जवानों द्वारा दिए गए अद्वितीय बलिदान की को याद करते हुए आज का दिन ये समर्पित है, और इसीलिए आज के दिन को सारागढ़ी डे के रूप में हम याद करते हैं, उन लोगों को मनाते हैं। चलिए इसके पीछे क्या थी सारी बात, इस पर बात कर लेते हैं। असल में यूनेस्को ने इस घटना को विश्व इतिहास की उन 8 सबसे साहसी कहानियों में स्थान दिया है जहाँ सैनिकों ने हार मानने के बजाय अंतिम सांस लड़ने का विकल्प चुना था। हुआ क्या था, सारागढ़ी उत्तर पश्चिम सीमांत यानी कि NWFP जो कि पाकिस्तान में है फिलहाल, मिसामना पर्वत श्रृंखला पर स्थित एक छोटी सी सैन्य चौकी यानी कि कम्युनिकेशन पोस्ट थी, और फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान के बीच संचार साधनों के माध्यम से संपर्क बनाए रखने का काम भी वो किया करती थी। और इसी के साथ लगभग 10,000 से 12,000 और कजाई और अफ्रीकी अफगान आदिवासियों ने सारागढ़ी पोस्ट को चारों तरफ से घेर लिया था। 12 सितंबर 1897 की सुबह को उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि सारागढ़ी को वो ध्वस्त करके मुख्य किलों पर अपना जो है आधिपत्य जमा लेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, सारागढ़ी पोस्ट पर 36वें सिख रेजिमेंट के केवल 21 जवान मौजूद थे उस वक्त, जिनका नेतृत्व हवलदार ईशर सिंह कर रहे थे। अफगानों ने सिख सैनिकों को बिना लड़े आत्मसमर्पण करने की पेशकश की, जिसे हवलदार ईशर सिंह और उनके साथियों ने स्पष्ट रूप से ठुकरा दिया था। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद चलिए आपको बता देती हूँ। सिग्नलर गुरमुख सिंह ने फोर्ट लॉकहार्ट में बैठे उच्च अधिकारियों को हमले की सूचना दी। जब अतिरिक्त सैन्य सहायता पहुंचना असंभव दिख रहा था तो जवानों ने अंतिम समय तक पोस्ट की रक्षा करने का संकल्प ले लिया, और 21 जवानों ने घंटों तक हजारों की भीड़ को रोके रखा और लगभग 180 से 600 दुश्मन तक उन्होंने ढेर कर दिए। जब बारूद खत्म हो गया तो जवानों ने अपनी संगीनों यानी के बेयोनेट्स से आमने सामने की लड़ाई भी लड़ी, और सिग्नलर गुरमुख सिंह ने अपना अंतिम संदेश भेजा। वो क्या था, अनुरोध है कि मुझे संचार उपकरण बंद करने की अनुमति दी जाए, अब मैं राइफल उठा रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने अकेले ही दर्जनों दुश्मनों का सामना करते हुए शहादत प्राप्त की थी। इस दिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको कुछ देर बाद दूंगी, लेकिन फिलहाल अभी ये गाना हम सुनेंगे, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू, कहीं मत जाइएगा दोस्तों।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
3: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. और दोस्तों 11:41 हो गई हैं और इसी के साथ मैं आज आपसे बातें कर रही हूँ सारागढ़ी के बारे में कि आज सारागढ़ी दिवस क्यों मनाया जाता है और उस युद्ध के बारे में आज हमने कुछ बातें की. इसी के साथ आपको बताऊं कि ब्रिटिश संसद ने इन सभी 21 सैनिकों को मरणोपरांत तत्कालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार इंडियन ऑर्डर ऑफ मैरिट से सम्मानित किया था जो आज के परमवीर चक्र के समान माना जाता है. इसी के साथ ब्रिटिश सेना ने 36वीं सिख रेजिमेंट के इस बलिदान की स्मृति में पंजाब के अमृतसर और फिरोजपुर में स्मारक भी बनवाए और 4 सिख बटालियन आज भी हर साल 12 सितंबर को सारागढ़ी दिवस के रूप में मनाती है जहां शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर और श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है. दोस्तों आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है या आपको इस बारे में पहले ही पता था सारागढ़ी दिवस के बारे में, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं. बहुत ही आसान सा नंबर है मेरा 9639012111. इस नंबर पर आप कॉलिंग मैसेज कर सकते हैं और चाहे तो आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए भी और हमारे सोशल हैंडल्स के माध्यम से भी. फिलहाल हम आदमी मूवी का ये बहुत ही बेहतरीन सा गाना इन्जॉय करेंगे. उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें.

हाय एवरीवन, आई एम कपिल गौरी, द इंटरनेशनल फैशन शो डायरेक्टर। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 91.0 FM। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। आरजे वंशी के साथ।

0: भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
4: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वंस अगेन वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों बहुत सारी बातें आपसे हो रही हैं और प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि आज ना हम कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बात पर बात करने वाले हैं जो हमारी सुरक्षा से संबंधित है। और हम बात करने वाले हैं यातायात नियम के बारे में कि आखिरकार ये इतने ज्यादा मुख्य क्यों हो जाते हैं और इनका मुख्य महत्व क्या हो जाता है। देखिए, सड़क पर चलना हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो है ही, लेकिन आपकी जरा सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है। और भारत और दुनिया भर में हर साल आपको जानकर हैरानी होगी, लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं। तो ऐसे में जरूरत है आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ट्रैफिक रूल्स अगर आप फॉलो करते हैं तो ये सिर्फ एक आपकी कानूनी मजबूरी बन जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, जीवन की सुरक्षा इससे इंश्योर हो जाती है। यातायात नियमों का सबसे बड़ा और मुख्य एम जो है वो इंसानी जिंदगी को बचाना है। इसलिए आप हमेशा हेलमेट पहनें, सीट बेल्ट लगाएं और स्पीड लिमिट को मेंटेन करके रखें, उसी को मद्देनजर रखते हुए गाड़ी चलाएं और ऐसी कुछ बुनियादी आदतों को अपनी रेगुलर लाइफ में शामिल करें, क्योंकि किसी भी दुर्घटना के वक्त जान बचाने में 70-80% तक मददगार साबित हो जाती हैं ये आदतें आपकी, अगर आप इन आदतों पर चल रहे होते हैं। बाकी ये एक्सीडेंट्स में भी रिडक्शन का एक कारण बन जाती हैं। ज्यादातर सड़क हादसे जो हैं वो स्पीड बहुत ज्यादा जब रहती है तब होते हैं, या आप गलत तरीके से ओवरटेकिंग कर लेते हैं, या इसके साथ ही आप रेड लाइट जंप कर लेते हैं, इनके कारण से होती है। और अगर आप नागरिक ट्रैफिक सिग्नल और साइंस का पालन करेंगे तो सड़क दुर्घटनाओं के जो ग्राफ हैं वो काफी हद तक नीचे लाया जा सकता है। तो आपका सहयोग बड़ा ही जरूरी है। आजाद हिंद रेडियो की पूरी टीम और सुभारती विश्वविद्यालय आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता है कि आप सड़क सुरक्षा नियमों का जरूर पालन करें, क्योंकि इससे आपकी ही जिंदगी को फायदा होने वाला है। बाकी और क्या बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है करूंगी सारी की सारी, बट मीनवाइल एंजॉय करेंगे ये गाना, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा दोस्तों।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, अभी ना मैं आपसे बातें कर रही हूँ ट्रैफिक रूल्स की इम्पोर्टेंस के बारे में। और अभी तक हमने जाना कि किस तरीके से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, और ये कुछ चीजें इंश्योर करता है, जितर से 80% तक मददगार साबित होती है छोटी छोटी जो आदतें होती हैं आपकी, जैसे कि हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना या स्पीड को लिमिट में रखना। वहीं अगर आप इन आदतों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो एक्सीडेंट्स के जो कारण हैं वो भी घट जाते हैं, और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स के मामलों में भी गिरावट आती है। वहीं आपको बता दूं कि जब लोग अपने लेन में गाड़ी चलाते हैं और बेवजह ओवरटेक नहीं करते तो सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहती है। नियमों का पालन करने से सड़कों पर गाड़ियों की जो आवाजाही है वो बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चलती है, जिससे लोगों का कीमती समय और ईंधन दोनों ही बचते हैं। अब क्योंकि आपके समय से कोई भी चीज कीमती नहीं है, तो इसको आप बचाएं और अपनी ही लेन में गाड़ी चलाएं और बेवजह का ओवरटेक ना करें। वहीं आपको बता दूं कि सड़क पर सिर्फ गाड़ियां ही नहीं चलती हैं, अपने आजू बाजू अगर आप देखेंगे तो पैदल चलने वाले लोग भी आपको दिखाई देंगे। तो जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी रोके और पैदल यात्रियों को रास्ता देना और उनको उनके सुरक्षित सफर के लिए पहुँचा देना, ये भी हमारा ही दायित्व बन जाता है अगर आप किसी वाहन को चला रहे हैं। इसी के साथ ट्रैफिक नियमों में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसे आपातकालीन वाहनों को पहले रास्ता देने का नियम है, तो इस नियम को जरूर अपनाएं। सही लेन अनुशासन का पालन करने से इन गाड़ियों को समय पर निकलने की जगह मिलती है, जिससे किसी की जान भी बचाई जा सकती है। तो वे फॉर इमरजेंसी व्हीकल्स जरूर आप इंश्योर करें, और अगर आप भी सड़क पर हैं और अगर आप किसी की ऐसी हेल्प कर सकते हैं एम्बुलेंस को रास्ता दे करके या फायर ब्रिगेड को रास्ता दे करके, तो उसको जरूर आप अपनाएं, क्योंकि इससे काफी जिंदगानियां बच सकती हैं, है ना? आपका क्या कहना है इस बात पर मुझे जरूर बता सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान सा है, 9639012111। मीनवाइल एंजॉय करेंगे प्यारा सा गाना, उसके बाद आई बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, यू ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, मेरे यानी आरजे वंशी के साथ।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
3: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
4: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
3: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी

0: बीमारियों से निजात HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। शुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। शुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

0: You are listening Azad Hind Radio 90.0 FM with one and only RJ Vanshi.
1: Once again, welcome back to Azad Hind Radio 90.0 FM, Nation First, Always First. और दोस्तों, बहुत सारी बातें मैं आपसे करने के लिए फिर से हाजिर हूँ आपके पास. प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार, और मैं इस प्रोग्राम में आपसे कुछ ऐसी बातें करती हूँ जो संबंधित होती हैं आपकी सेहत से. सखियों से कुछ बात करती हूँ, अपने गुफ्तगू करती हूँ, और साथ ही साथ हम बात करते हैं संसार के बारे में. बताती हूँ कुछ आपको ऐसे फैक्ट्स, बताती हूँ आपको हिस्ट्री, बताती हूँ आपको डे स्पेशल भी. लेकिन आपका भी दिन अगर खास है कोई, या कैसे खास है, क्यों खास है, क्या उसका रीजन है, आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं बेझिझक, बेधड़क और बिंदास होकर के मुझे कॉल लगा सकते हैं. 9639012111 नंबर हो जाता है मेरा. इस नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए भी कनेक्ट हो सकते हैं, और चाहे तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल हैंडल्स के माध्यम से भी. आपको जाना होगा इंस्टाग्राम पर, और आप जा सकते हैं मेटा, बोले तो फेसबुक पर भी, और दोनों ही प्लेसेस पर बड़े ही आसानी से हम आपको मिल जाने वाले हैं. वहां पर हमसे कनेक्ट हो जाइए, हमसे जुड़ जाइए और अपनी बात हम तक पहुंचा डालिए. साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारा प्ले स्टोर पर मोबाइल एप्लीकेशन भी है. आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर, आजाद हिंद रेडियो के नाम से अगर आप सर्च करते हैं तो वहां हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी उपलब्ध है. उसको इंस्टॉल करना बड़ा ही आसान है. आप उसको इंस्टॉल कीजिए और हमसे बस ऐसे ही निरंतर, बिना किसी डिसकंटिन्यूएशन के, बिना किसी रुकावट के जुड़ जाइए. फिलहाल चलिए, बहुत ही सारी बातें मैं आपसे करती हूं, और मैं चाहती हूं कि आप भी मुझसे इतनी ही बातें करें, और इसके लिए मैंने आपको जरिए बता ही दिए हैं. लेकिन आपसे कह दूं भी कि अभी ना मेरा हो चला है इजाजत देने का वक्त, तो मुझे दीजिए इजाजत. अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और बिंदास रहिए. बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों.

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।
1: जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन, जिनके कारण हम सभी आजाद हुए। आइए हम सब मिलकर गाएं आजाद हिंद गान और करें देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। जय हिंद।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यू ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर आपका स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, इस कार्यक्रम का आधार है सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसका नाम है राष्ट्र अनुभूति, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये सपना देखने वाले आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी किताब के माध्यम से हमें समझाते हैं भारतीय संस्कृति के विषय में। किसी क्षेत्र विशेष में विकसित जीवन पद्धति, दर्शन, चिंतन धारा, इतिहास, गौरवशाली अतीत, प्रेरणादायक प्रसंग और महापुरुषों के महान कृत्यों से परिभाषित होती है। संस्कृति को किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में नहीं बांधा जा सकता। भारतीय संस्कृति विश्व की महानतम और प्राचीनतम संस्कृति है। विश्व के इतिहास को देखें तो अन्य देशों की संस्कृतियां समय की धारा के साथ नष्ट होती चली गई, लेकिन समन्वयवादी दृष्टि के कारण भारतीय संस्कृति सदा स्थिर रही और समय की गति के साथ पहले से अधिक निखरती चली गई। भारतीय संस्कृति के समन्वय के अतिरिक्त दयालुता, उदारता, अहिंसा मूल भाव है। कभी कभी हम किसी भी भाव को असीमित एवं संपूर्ण समझने की भूल कर जाते हैं। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी भावों को सम्यक रूप से समझना है। तथागत भगवान बुद्ध ने अपने सभी विचारों में सम्यकता का मिश्रण किया, ताकि आमजन किसी भी भाव को संपूर्ण एवं असीमित समझकर उसके दुष्प्रभाव से हानि न उठाए। कुछ उदाहरण जिनसे आप शिक्षा ले सकते हैं, जैसे दयालुता। एक नदी के भीतर एक सन्यासी नहाने के लिए खड़े थे। उन्होंने देखा कि उसके पास से एक बिच्छू बहता चला जा रहा है। उसने बिच्छू को अपने हाथ से नदी के बाहर फेंकना चाहा। अपने स्वभाव के कारण बिच्छू का संपर्क जैसे ही सन्यासी व्यक्ति की हथेली पर हुआ, बिच्छू ने डंक मार दिया। मारे गए डंक की पीड़ा से उस सन्यासी के हाथ से वो बिच्छू पुनः पानी में गिर गया। अगली बार भी सन्यासी ने उस बिच्छू को बचाने के लिए वैसा ही किया। बिच्छू ने पुनः डंक मारा। बार बार ऐसा करता देख बाहर खड़े एक सामान्य जन द्वारा सन्यासी से पूछा गया कि जब ये बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है तो आप इसे बचाने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? तब सन्यासी ने कहा, मेरा स्वभाव दया और दयालुता है, एवं जब बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है और वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो भला मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं? ये अत्यंत सुंदर उपदेश है, परंतु इस सिद्धांत का अनुपालन सम्यक रूप से किया जाना चाहिए। कुछ लोग जिनका स्वभाव ही दुष्टता पूर्ण हो, उनके प्रति दयालुता करने के स्थान पर उनसे बचना ही अच्छा है। स्वागत है आप सभी का सुभारती आजाद हिंद रेडियो के इस खास कार्यक्रम राष्ट्र चेतना में। जय हिंद।

जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है सुभारती आजादी रेडियो 90.0 FM पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। ये कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना। दोस्तों, अगर बचपन में किसी को सही से संस्कार मिल जाए, सभी जानकारियाँ मिल जाए, हमारा देश क्या है, इतिहास क्या है, चरित्र क्या होता है, अगर ये सभी बातें एक बच्चे को ठीक तरह से बता दी जाए तो बच्चा कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चल सकता। मैंने एक पुस्तक पढ़ी, राष्ट्र अनुभूति, जिसके लेखक सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हैं। जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा, मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा, इस पुस्तक में तमाम संस्कार निहित है। अगर ये पुस्तक आप खुद पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, या इस पुस्तक पर आधारित ये राष्ट्र चेतना कार्यक्रम बच्चों को सुनाते हैं, तो उसको तमाम संस्कार मिल जाएंगे। इस पुस्तक में परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी ने उन सभी विषयों को ले लिया है जो किसी भी बच्चे के एक बेहतर भविष्य निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत और भारत की संस्कृति, चरित्र क्या है, राष्ट्रीय चरित्र क्या होता है, माता पिता का आदर और सम्मान किस प्रकार करें, शिक्षकों और गुरुओं संतों का सम्मान किस प्रकार करें, जीवन उपयोगी दैनिक व्यवहार क्या होता है, कार्य का सम्मान, व्यायाम, योग, ध्यान एवं शारीरिक साधना, यातायात के नियमों का पालन करना, पर्यावरण और प्रदूषण को किस प्रकार कंट्रोल करें, मोबाइल का उपयोग और प्रयोग, नशे से किस प्रकार दूरी बनाई जा सकती है, नशे को किस प्रकार से छोड़ना चाहिए, सनातन और सनातन धर्म क्या है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान यानी जन गण मन, आजाद हिंद गान क्या है, जय हिंद का नारा क्या और क्यों होता है और क्यों होना चाहिए, और इसका ज्ञान हर बच्चे को किस प्रकार होना चाहिए, सैनिकों और उनके परिजनों का, परिवारों का सम्मान, स्वतंत्रता कैसे मिली, बिना लाठी, बिना खड़क, बिना ढाल के नहीं मिली, कितने कोटी कोटि क्रांति वीरों ने अपना योगदान दिया, संयुक्त भारत का स्वतंत्रता दिवस क्या होता है, 21 अक्टूबर की विशेषता क्या है, भारत का ध्वज क्या है, भारत का संविधान क्या है, तो राष्ट्र अनुभूति

सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं वास्तु कृष्णा और हमारे एक खास कार्यक्रम है राष्ट्र चेतना। राष्ट्र अनुभूति नामक पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम हर परिवार में गूंजना चाहिए, सुना जाना चाहिए, आपको इसे समझना चाहिए। इस पुस्तक के लेखक कोई साधारण या आम इंसान नहीं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया इस राष्ट्र की सेवा भाव के लिए, जो हमको सिखाते हैं कि किस प्रकार हमें संस्कारों का ध्यान देना चाहिए। आज के समय में युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अत्यधिक मोबाइल देखना, नशे की तरफ ज्यादा ललक होना या ज्यादा उस चक्कर में पड़ जाना, गलत रास्तों पर चल निकलना। अगर हम अपने बच्चों को ठीक प्रकार से संस्कार देंगे या उन्हें देश के प्रति जिम्मेदारियों का भाव समझाएंगे तो बच्चे कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। भारत क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, सनातन क्या है, ये सब कुछ अगर बच्चों को सिखाएंगे बचपन से ही तो बच्चे कभी गलत रास्तों पर नहीं जा सकते। सबसे सही उम्र किसी बच्चे को संस्कार देने की होती है बचपन, जब वो आपकी बात सुनता है। जब एक बच्चे के लिए उसके माता पिता उसके हीरो से कम नहीं होते, जब बच्चा अपने माँ बाप से हर बात शेयर करता है, वही सबसे सही उम्र होती है अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए। तो माता पिता के लिए भी जरूरी है ये पुस्तक और ये कार्यक्रम, और हर बच्चे के लिए, हर युवा के लिए जरूरी है। स्वागत आप सभी का राष्ट्र चेतना। ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए।

0: कैंसर से डरिए नहीं। सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।
1: जय हिंद, आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मैं हूँ आपके साथ वास्तु कृष्णा। दोस्तों, राष्ट्र चेतना सुभारती आजाद हिंद रेडियो की एक खास प्रस्तुति है। राष्ट्र चेतना एक ऐसा ऑडियो बुक शो, एक ऐसी वैचारिक यात्रा जो जीवन को बदल सकती है, जहां आवाज सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि विचारों को जागृत भी करती है। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं एक ऐसे विशेष वैचारिक श्रृंखला को, एक ऐसा ऑडियो बुक शो जो केवल शब्दों का संग्रह नहीं होगा बल्कि राष्ट्र, संस्कृति, चरित्र और चेतना की एक जीवंत यात्रा होगा। राष्ट्र चेतना

0: सिर्फ सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।
1: भारत केवल एक भूभाग नहीं है, भारत एक भावना है, एक संस्कार है, एक चेतना है। वो चेतना जिसने कभी पूरे विश्व को ज्ञान दिया, तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय दिए। वो चेतना जिसने दुनिया को कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। लेकिन आज क्या हम उसी चेतना से जुड़े हुए हैं? क्या हमारी नई पीढ़ी अपने संस्कारों, अपने कर्तव्यों, अपने राष्ट्रीय चरित्र और अपनी सभ्यता को समझ पा रहे हैं? आज मोबाइल है, तकनीक है, सुविधाएं हैं, AI भी है, लेकिन क्या भीतर से हम उतने ही मजबूत हैं? क्या इन्हीं प्रश्नों को लेकर हम लेकर आए हैं ये विशेष कड़ी। ये कार्यक्रम आधारित है प्रख्यात शिक्षाविद, समाज चिंतक, राष्ट्रवादी विचारक परम आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी। केवल एक चिकित्सक नहीं बल्कि एक समाज और राष्ट्र की चेतना को समझने वाले एक कर्मयोगी हैं। एक ओर वे चिकित्सा सेवाओं से लोगों का जीवन स्वस्थ बनाने का कार्य करते हैं, तो दूसरी ओर शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से देश के भविष्य को दिशा देने का भी प्रयास कर रहे हैं। उनकी पुस्तक है राष्ट्र की अनुभूति, एक भारत श्रेष्ठ भारत, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। हमारे सुभारती आजाद हिंद रेडियो को ये नारा भी उन्होंने दिया कि देश सर्वोपरि है, सबसे पहले देश होना चाहिए। ये पुस्तक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए लिखी गई है। इस श्रृंखला में हम इसी विषय में बात करेंगे, भारत और भारतीय संस्कृति की, राष्ट्रीय चरित्र की, माता पिता और गुरुओं के सम्मान की, व्यवहार, अनुशासन और संस्कारों की, योग, ध्यान, स्वास्थ्य की, पर्यावरण, यातायात और सामाजिक जिम्मेदारियों की, और सबसे महत्वपूर्ण सनातन संस्कृति और मानवीय मूल्यों की। क्योंकि राष्ट्र केवल संस्कारों से नहीं बनता, राष्ट्र बनता है नागरिकों से भी, और नागरिक बनते हैं चरित्र, संस्कार और चेतना से। राष्ट्रीय चेतना एक ऐसा मंच है जहां आने वाले समय में हम विद्वानों, शिक्षकों, समाज सेवियों, युवाओं और विशेष अतिथियों के साथ इन विषयों पर चर्चा भी करेंगे। शुरुआत करते हैं उस विचार से जो हर भारतीय के भीतर सोई हुई जिम्मेदारी को जगाना चाहती है, राष्ट्र चेतना। आज के प्रथम अध्याय के साथ भारत और भारतीय संस्कृति।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
4: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
5: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
6: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
5: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
7: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
8: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
9: नमस्कार, जय हिंद, एक बार फिर से आपका स्वागत है। यह है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो। गांव में रहकर कैसे हमारे किसान भाई ज्यादा कमाई कर सकते हैं, आज इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही साथ के सरकारी योजनाओं का लाभ हमारे किसान भाई किस प्रकार गांव में रहते हुए उठा सकते हैं, सरकारी योजनाओं और बैंक लोन की मदद से हम आधुनिक और लीक से हटकर यानी अलग खेती को बेहद कम पैसों में शुरू कर सकते हैं। सरकार इसके लिए हमें भारी मात्रा में सब्सिडी यानी कि छूट देती है। अलग और नई तकनीक की खेती के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ हम सभी उठा सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय बागवानी मिशन यानी NHM, इसमें पोली हाउस, नेट हाउस, मशरूम यूनिट, स्ट्रॉबेरी, हाई वैल्यू खेती, ये सब करने के लिए 40% से लेकर 50% तक भी आप सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।

0: धरती की गोद से अन्न उगाने वाला, धूप में तप कर भी मुस्कुराने वाला, वो है भारत का किसान। न मौसम से डरता है, न तूफान के आगे झुकता, क्योंकि उसकी ताकत है मिट्टी और मेहनत। सुनिए खेती किसानी का खास कार्यक्रम जय जवान जय किसान।
1: मेरे देश की धरती,
0: नई सोच, नई तकनीक और हौसले की पहचान, सिर्फ सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। जब किसान जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। वास्तु कृष्णा।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: तेरी नाक नकीली हो फटे तू
2: ये
1: तू
2: तू, तू।

जय हिंद। आपका स्वागत है सुभारती आजादी रेडियो 90.0 FM पर। किसान भाई आज के कार्यक्रम में बात कर रहे हैं कि किसानों के लिए सरकार किस प्रकार से मदद भेजती है, यानी कि सब्सिडी जो स्कीम होती है, हम उनका लाभ किस प्रकार से उठा सकते हैं। जैसे अगर आप फूलों की खेती करना चाहते हैं या मशरूम यूनिट लगाना चाहते हैं, स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हैं, या फिर आप शिमला मिर्च की या फिर आप ब्रोकली की खेती करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पॉली हाउस या नेट हाउस की जरूरत पड़ती है। उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, तो सरकार आपको 40-50% तक की भारी सब्सिडी देती है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, अपना प्रोजेक्ट तैयार करना होगा, थोड़ी ट्रेनिंग भी आपको लेनी पड़ सकती है। तो ये एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, NHM, आप इसके द्वारा अप्लाई कर सकते हैं और सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। एक होता है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी के प्रति बूंद अधिक फसल, इसे हम टपक सिंचाई विधि या फव्वारा या फिर स्प्रिंकलर या फिर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी बोलते हैं, और सरकार पिछले कई साल से इसमें किसानों की मदद कर रही है। इसमें क्या होता है कि आपके पूरे खेत में ना छोटी छोटी पाइप बिछा दी जाती है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है। वो क्या होता है कि सिर्फ हर पौधे की जड़ों में थोड़ा थोड़ा सा एक एक बूंद पानी टपकता रहता है, उसमें आपको पूरे खेत में पानी भरने की जरूरत नहीं होती है। तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार छोटे से छोटे किसानों को भी 80% से 90% तक की छूट इस विषय में देती है। कभी अगर आपको लगे कि कुछ अलग हटके मुझे खेती करनी है, ड्रिप इरिगेशन आपने अपने गांव में, ज्यादातर ये हर गांव में देखा ही जाता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, बहुत से किसान भाई तो इससे गन्ना भी बोते हैं, आपने देखा होगा वो ब्लैक कलर का पाइप पूरे खेत में बहुत ज्यादा बिछा होता है, ये वही सिस्टम होता है। सरकार इसमें आपकी मदद करती है, तो आप यहां से अगर इस विधि को अपनाना चाहते हैं, कुछ अलग हटके करना चाहते हैं, सरकार आपको मदद करने के लिए तैयार है। आप तैयार है क्या, बताएगा जरूर 9639012111 पर।

0: आजाद हिंद रेडियो के संग जय हिंद।
1: भवम भवानी सहितम नमामि
0: वास्तु कृष्णा के साथ।
2: सौ अच्छी चीजें हो जाएं, लेकिन अगर एक चीज खराब हो तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ उसी पर जाता है।
3: जो आया है वो जाएगा भी।
4: जिस मनुष्य के लिए सुख और दुख समान अवस्था है, जो भय और क्रोध से मुक्त है, जो स्थिर बुद्धि वाला है ना, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है।
2: जब एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक गम पे बार बार रोते क्यों मेरे दोस्त।
0: सुनिए सुप्रभात, जिंदगी को जीने का एक नया नजरिया, हर सुबह सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर, मेरे यानी वास्तु कृष्णा के साथ।
2: तुम जानते हो इंसानों की सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम भगवान में तो मानते हो लेकिन भगवान की एक नहीं मानते।
5: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
6: सुभारती आजाद हिंद रेडियो सुनते रहिए वास्तु कृष्णा के साथ।
7: दो चार सोची दो आगे जरा मेरे से सुना ले भाई, उसके क्या बोला? न्यू बोला

करो बात भाई, कह जमींदारे की खेती लाग जा तो ऐसी लाग जा कि बस जिंदगी बरताई का सुख हो जा। अरे जो पिछले 2 साल पहले काल पड़ा था, जय दागा काल पड़ जा तो नु समझो गया काम तय।

अपना जमींदार, अगर भाई का कुछ काम हो जा के खेत का, आ जा हल छोड़ के न और पाछे तना दिया जा, कोई नहीं बेरा बिचारा ने लोग बागत है मेरा चादर फिर पानी देन चल है और वो क्या का पाड़ा पड़े को का बीस नदी कपड़े के न बेचारा मोरी में बाइकी में फंस जा, काटना पड़े जरूर, कैसे बताया भला।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो सुनते रहिए वास्तु कृष्णा के साथ।
1: जय हिंद वंदे मातरम। यह मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो और ये कार्यक्रम है जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी सरकारी योजनाओं के लिए जो हम किसानों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं। अगर किसी के पास जमीन थोड़ी है, कम है, तब भी वो गांव में रहते हुए ज्यादा कमाई के साधन कैसे जुटा सकता है या पैदा कर सकता है। तो अगर आपके पास जमीनें कम है, साधन कम है, पैसा नहीं है, सरकार आपको सब्सिडी के माध्यम से मदद पहुंचाने के लिए तैयार, बिल्कुल तैयार बैठी है। अगर आप बागवानी करना चाहते हैं, जैसे सब्जी बोना या मशरूम लगाना, इस तरह की खेती आप करना चाहते हैं, तो पोली हाउस या नेट हाउस आपको बनाना पड़ेगा। उसके लिए सरकार राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत आपको सब्सिडी देने के लिए तैयार है। आपके पास पूरा प्रोजेक्ट और आपको थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, वो होना चाहिए। दूसरा, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया, टपक सिंचाई विधि, स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, इसको कई नाम दिए जाते हैं, इसके लिए भी सरकार आपकी मदद करती है। इसका योजना का नाम होता है प्रति बूंद अधिक फसल योजना। उत्तर प्रदेश मशरूम प्रोत्साहन योजना भी है। मेरठ के विकास भवन में स्थित उद्यान विभाग में जाकर आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं से आपको मशरूम उगाने की ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। कल्टीवेशन रूम किस प्रकार से बनाना है, किस प्रकार से आपको प्रोसेस करना है, किस प्रकार से आप इसको बेचेंगे, सब कुछ ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी। उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट की बदौलत आप अपना एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे और उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के साथ जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको हर प्रकार की सहायता सरकार से जरूर मिलेगी। बस एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों आपको, कि आपका प्रोजेक्ट सॉलिड होना चाहिए, आपको ट्रेनिंग भी, क्योंकि ना इसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, आप लोन लेते हैं, आप कर्जा भी उठाते हैं, वो एक दिन हमें वापस भी चुकाना है। तो हमारा प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, हमारा सच में मन होना चाहिए कि हम सच में कुछ करना चाहते हैं, वरना बेवजह का कर्ज अपने सर पर लेने से कोई लाभ नहीं।

तो सारंदरी ने बता दिया कि मैं कभी हस्तनापुर रहा करती थी। एक दिन उस सुदक्षिणा का बड़ा भाई कीचक मदरा पान करके और अपनी बहन के महल में आता है। उसने उस सारंदरी को देखा और किस तरह क्या कहने लगा।

0: और सनातन के रंग सुभारती आजाद हिंद रेडियो के संग जय हिंद।
1: भवम भवानी सहितम नमामि
0: वास्तु कृष्णा के साथ।
2: सौ अच्छी चीजें हो जाएं, लेकिन अगर एक चीज खराब हो तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ उसी पर जाता है।
3: जो आया है वो जाएगा भी।
4: जिस मनुष्य के लिए सुख और दुख समान अवस्था है, जो भय और क्रोध से मुक्त है, जो स्थिर बुद्धि वाला है ना, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है।
2: जब एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक गम पे बार बार रोते क्यों मेरे दोस्त।
0: सुनिए सुप्रभात, जिंदगी को जीने का एक नया नजरिया हर सुबह सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर मेरे यानी वास्तु कृष्णा के साथ।
2: तुम जानते हो इंसानों की सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम भगवान में तो मानते हो लेकिन भगवान की एक नहीं मानते।
5: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: सुभारती आजाद हिंद रेडियो सुनते रहिए वास्तु कृष्णा के साथ।
1: ईश्वर है या नहीं, इसका प्रमाण इंसान आस्तिक या नास्तिक होकर दे सकता है, पर भगवान अपने बनाए हुए बंदों में कभी भेद नहीं करता।
2: भगवान की भक्ति और शक्ति को जानिए।
3: जो चाल बदल दे काल का, कोई किसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का।
4: वास्तु कृष्णा के साथ हर सुबह दिन की शुरुआत जीवन को रूपांतरित कर देने वाली बातें सिर्फ सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर सुबह 4 बजे से 8 बजे तक भक्ति और भजन रोजाना सुनना ना भूलिए। सुनते रहिए मेरठ का नंबर 1 रेडियो सुभारती रेडियो।
2: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर वास्तु कृष्णा के साथ।
5: रख विश्वास, तू है शिव का दास।

0: भगवान बुद्ध कहते हैं, जीवन में किसी भी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। फिर जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी, उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता।
1: बुद्धं शरणं गच्छामि।
0: अब सुनिए बुद्धवाणी हर रविवार सुबह 6 बजे से वास्तु कृष्णा के साथ, सिर्फ सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।

0: तू अकेला भी है तो गम न कर, तेरे साथ वो है।
1: रघुनंदन रघु रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति छायन
0: पावर ऑफ हनुमान।
2: यतो धर्मस्ततो हनुमान, यतो हनुमानस्ततो जयः।
0: हर मंगलवार वास्तु कृष्णा के साथ सुबह 6 बजे से सिर्फ शुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।
2: कलयुग में हर धर्म योद्धा के साथ सदैव है जो खड़े, तुम पर भी उन्हीं की कृपा है।
0: पावर ऑफ हनुमान।
3: जय श्री राम।
4: शुभारती आजाद हिंद रेडियो सुनते रहिए वास्तु कृष्णा के साथ।
0: बुद्धं शरणं गच्छामि। अब सुनिए बुद्ध वाणी हर रविवार सुबह 6 बजे से वास्तु कृष्णा के साथ।
5: हर दिन के पल को चेतना में जी, जो पीछे चला गया उसका ना राग मन में, ना ही आने वाले कल के सपनों की नींद में डूबे रहो।
4: सुभारती आजाद हिंद रेडियो सुनते रहिए वास्तु कृष्णा के साथ।
0: बुद्धं शरणं गच्छामि।
6: कृपया ध्यान दीजिए।

0: कीजिए. मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज.
1: गाड़ी संख्या 9.00 यानी 90.0 सुभारती एक्सप्रेस जल्द आ रही है शाम 5 बजे से वास्तु कृष्णा के साथ सिर्फ सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर.
0: हम आपकी सफल सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं.
1: मेरठ का नंबर 1 रेडियो.
0: We wish you all a very happy, comfortable and safe journey. Didi Nana.

0: ओनली ऑन सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
1: इतनी कह के भारत माता वहां से चली जाती है। जब सुबह हुई सुभाष चंद्र बोस अपनी नींद से उठा तो स्वप्न का सारा हाल अपनी भावज के सामने कहता है कि री भावज, आज मुझे सपने में भारत माता दिखाई दी और ये कहने लगी कि बहादुर जाग, बगैर लड़ाई की राज नहीं मिलता, बिना त्याग की राज नहीं मिलता। जब उसकी भावज ने अपने देवर की बात को सुना तो उसने कहा कि इस बात की ताल कर दे, क्योंकि अंग्रेजों का राज बहुत बड़ा है, हमारी कोई ताकत नहीं है उनके सामने। उसकी भावज सुभाष चंद्र बोस को समझाती है और क्या कहती है,
2: ए जाल साज़,

एक बार फिर से आपका स्वागत है सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो पर। आपकी पसंद के तराने, रागनी, देसी गाने चलते हैं और बात करते हैं कि हमारे किसान भाई किस प्रकार से गांव में रहकर ज्यादा कमाई कर सकते हैं, सरकार से किस प्रकार हम मदद प्राप्त कर सकते हैं, कुछ अलग हटकर अगर हम करना चाहते हैं तो सरकार इसके लिए तैयार है, हमारे पास एक प्रोजेक्ट और ट्रेनिंग होनी चाहिए तो सरकार आपको लोन देती है, सब्सिडी भी देती है। अब एक योजना की बताता हूं मैं आपको, बात PKVY यानी परम

को मछली पालन के लिए भी देती है, बकरा पालन के लिए भी देती है, गाय पालन के गौशाला के लिए भी देती है। आप बताइए आपको क्या करना है। सरकार तो हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है, जरूरत है हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि आपको अपना गाँव छोड़कर दूर दराज किसी शहरों में जाना पड़े और अपने गाँव की मिट्टी को छोड़कर कहीं दूर जाना किसी को पसंद नहीं होता। सब जाते हैं सिर्फ कमाई के चक्कर में, तो कर सकते हैं आप शुरू अपने गांव में।

0: धरती की गोद से अन्न उगाने वाला, धूप में तप कर भी मुस्कुराने वाला, वो है भारत का किसान। न मौसम से डरता है, न तूफान के आगे झुकता, क्योंकि उसकी ताकत है मिट्टी और मेहनत। सुनिए खेती किसानी का खास कार्यक्रम जय जवान जय किसान।
1: मेरे देश की धरती,
0: नई सोच, नई तकनीक और हौसले की पहचान, सिर्फ सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। जब किसान जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। वास्तु कृष्णा के।

आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
4: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
5: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
6: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
5: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
7: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio, Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
8: जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। कार्यक्रम है जय जवान जय किसान। हमारे किसान भाई बैंक से, सरकार से किस प्रकार मदद प्राप्त कर सकते हैं, इसी विषय में आजकल हम चर्चा कर रहे हैं। तो वैसे तो KCC के बारे में आपने खूब सुना ही होगा, ये वो लोन होता है जो तकरीबन हर किसान ने लिया होता है सरकार से। इसमें मिनिमम ब्याज दरों पर बैंक आपको लोन देता है और किसानों की मदद करने के लिए इस तरह की योजनाएं होती हैं। लेकिन सिर्फ एक या दो योजनाएं नहीं होती है, किसानों के लिए कई सारी योजनाएं हैं। हमें क्या करना है पहले हमें वो डिसाइड करना होगा। कई किसान भाई लोन लेकर अपनी जमीनों पर, थोड़ा लोन उठाकर कुछ पैसा खेती में लगाते हैं और कुछ दूसरा बिजनेस शुरू करते हैं। जैसे कुछ किसान भाई तो लोन उठाकर भैंस या गाय भी खरीद लेते हैं, बैंक देता है लोन, सरकार इसको इसके लिए प्रोत्साहन करती है। तो गाय या भैंस खरीद कर वहां से अपना डेयरी का काम शुरू करता है, दूध का काम शुरू करता है। एक पूरे परिवार को तकरीबन एक भैंस या एक से एक भैंस और एक गाय पूरे परिवार को पाल सकती है, इतनी कमाई करके उनका दूध से आप अर्जित कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी AIF, मशरूम का शेड बनाना हो, कोल्ड स्टोरेज बनाना हो, क्लीनिंग ग्रेडिंग मशीन लगाने की आपकी मन हो, 2 करोड़ तक का लोन सरकार देती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे जरूरी है ट्रेनिंग। सरकार को चाहिए पहले कि क्या आपने इस चीज की ट्रेनिंग की है क्या, चाहे वो पोल्ट्री फार्मिंग हो, चाहे वो आप बकरी पालन करना चाहते हो, मछली पालन करना चाहते हो, मशरूम आप बोना चाहते हो या कुछ भी आप करना चाहें, आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि परंपरागत तौर पर हम सबको ये करना नहीं आता है। एक बार आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आप आगे की फाइल के सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं। 50-60 हजार रुपए से लेकर 2-3 करोड़ तक का लोन सरकार बड़ी आसानी से देती है। बस जरूरत है हमें कुछ कर गुजरने की सोच रखने के लिए। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, KCC इसको बोल देते हैं, हर किसान जानता है, किसान कृषि कार्ड इसको बोलते हैं। और उससे क्या आप मधुमक्खी पालन, गाय पालन या भैंस या कोई भी काम कर सकता है किसान इन पैसों को लेकर। अगर कोई और सरकारी योजना की जानकारी आप चाहते हैं तो नंबर है 9639012111।

0: ओ मेरी सासू की भर लाई पानी।
1: आज तई ऐसा हुआ है कि मैंने कोई बात कही हो और ना की हो। ए सेठानी, नीर बनन चलेगी आज? ना जाऊंगा ना, गई तो पूरी बन ठन कर जाऊंगी।
0: तेरे के नुजाड़ में बिजली पड़े है, तू के नहरिए जागी, नुए चली जा।

ये है मेरठ का नंबर वन सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: नहीं।
1: लड़का आगे बढ़ता है,
0: हाँ।
1: लड़की पीछे हटती है,
0: फिर
1: लड़का लड़की को पकड़ लेता है,
0: फिर
1: लड़की शर्माकर मुस्कुरा दे तो पैर।
0: नहीं समझा।
1: अबे लड्डू, लड़की हंसी तो फंसी। अब भी नहीं समझा?
0: नहीं।

0: मोहब्बत के रास्ते में बहुत मुश्किलें हैं। फूलों को पाने के लिए कभी कभी कांटों से उलझना पड़ता है। रोमियो जूलियट का किस्सा सुना?
1: नहीं।
0: लैला मजनू का?
1: नहीं।
0: अनारकली का?
1: नहीं।
0: ओ, तुम तो सेंस पर्सन जैसे घी का लड्डू निकला। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए फॉर्मूला नंबर 440 ही ठीक रहेगा।
1: वो क्या?

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए, वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
4: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
5: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
6: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
5: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
7: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio, Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
3: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
2: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड, किठोर। अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड, किठोर।
4: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज। फिलहाल बात करना शुरू करेंगे राष्ट्रीय प्रोत्साहन दिवस के बारे में। हर साल 12 सितंबर को ये मनाया जाता है। ये एक ऐसा दिन है जो लोगों को दूसरों को प्रेरित करने, उनका समर्थन करने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप इस दिन के बारे में कुछ जानते हैं या कोई अच्छी जानकारी रखते हैं तो हमें जरूर बता सकते हैं हमारे सोशल हैंडल्स पर आकर। आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से हम आपको मिल जाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

0: सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: बचपन में उन्होंने हमारा हाथ थामा था, आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: एक मिनट स्क्रॉल करना बंद, डांस करना शुरू, लिसन टू ऑल द सॉन्ग्स फ्रॉम माय लेटेस्ट कूली नंबर।
1: मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज और आप सुन रहे हैं आपका अपना आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। राष्ट्रीय प्रोत्साहन दिवस के बारे में हम बात कर रहे थे, समझते हैं अब इसके उद्देश्य और इसके महत्व। तो पहला है सकारात्मकता का प्रसार। इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में सकारात्मकता, आशा और प्रोत्साहन को बढ़ावा देना है। ये हमें याद दिलाता है कि एक छोटा सा अच्छा शब्द या भाव किसी के जीवन में बदलाव ला सकता है। और अगला पॉइंट है भावनात्मक समर्थन। ये दिन लोगों को ये समझने में मदद करता है कि हर कोई अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करता है, ऐसे में किसी का प्रोत्साहन और समर्थन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये लोगों को ये भी दिखाता है कि वो अकेले नहीं है। कुछ और इसके उद्देश्य और महत्व हैं जिनके बारे में चर्चा हम करेंगे। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर शे पंकज। राष्ट्रीय प्रोत्साहन दिवस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, प्रोत्साहन मिलने से लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है। जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारी क्षमताओं पर विश्वास दिखाता है तो हमें भी खुद पर भरोसा होता है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक मेहनत कर सकते हैं और हम करते भी हैं। इसी के साथ ही साथ ये दिन मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत संघर्षों से जुड़े कलंक, जिसे स्टिग्मा भी हम कह सकते हैं, उन्हें दूर करने में भी मदद करता है, जिससे लोग अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बात कर सकें। बातें चलती रहेंगी, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर, कॉल नाउ 9639010313।
1: संगीत का नया ठिकाना, हर पल एक नया फसाना, आपका अपना रेडियो स्टेशन, आपकी अपनी पसंद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर जे पंकज और आप सुन रहे हैं मुझे आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। राष्ट्रीय प्रोत्साहन दिवस को लेकर बातें चल रही हैं। अब इसके इतिहास को थोड़ा समझते हैं। बात करते हैं साल 2007 की, जब इस दिन की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। अरकनसास के सीएरसी शहर में एक ग्रुप ने द इनकरेजमेंट प्रोजेक्ट नाम से एक पहल शुरू की। उनका मानना था कि लोगों में प्रोत्साहन की कमी एक बड़ी समस्या है। इसके बाद इस दिन को 12 सितंबर को मनाने का एक कारण 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिका में लोगों ने जिस तरह एक दूसरे का समर्थन किया उसकी याद दिलाना भी है। ये दिन उस एकजुटता और आशा की भावना का प्रतीक है। 2007 में सीएरसी की मेयर और अरकनसास के गवर्नर ने इसे एक आधिकारिक दिन घोषित किया। बाद में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 12 सितंबर को नेशनल डे ऑफ इनकरेजमेंट के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाझरा, देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: वो रेड लाइट सिर्फ 60 सेकंड की थी, लेकिन आपकी एक सेकंड की जल्दबाजी किसी का पूरी उम्र का इंतजार बन सकती है। हेलमेट और सीट बेल्ट बोझ नहीं, आपकी सुरक्षा कवच है। जिंदगी आपकी है, इसे सुरक्षित रखिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरशे पंकज। बात चल रही है राष्ट्रीय प्रोत्साहन दिवस को लेकर। अब समझते हैं कि आप इस दिन को कैसे मना सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से सबसे पहले समझ लेते हैं, आप किसी दोस्त परिवार के सदस्य या सहकर्मी को एक छोटा सा नोट या संदेश भेजें जिसमें आप उनकी सराहना करते हो। आगे है बातचीत करें, किसी को बात करते समय उन्हें बताएं कि आप उनकी मेहनत की कितनी सराहना करते हैं। और वहीं आजकल सोशल मीडिया का भी जमाना है, तो सोशल मीडिया पर सकारात्मक संदेश, प्रेरक कहानियां या ऐसे लोगों के बारे में पोस्ट साझा करें जिन्होंने आपको प्रेरित किया हो। और एक छोटा सा काम भी आप जरूर करें, किसी एक ऐसे व्यक्ति की मदद करें जो परेशान हो, या कोई छोटा सा काम करें जो दूसरों को खुश कर सके। यही है राष्ट्रीय प्रोत्साहन दिवस। और ये ऐसा नहीं है कि 12 सितंबर को ही ध्यान में रखा जाए, आप हर दिन किसी ना किसी को प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये तो बस एक मौका होता है, एक दिन होता है कि सभी को इसके बारे में बताया जाए और क्या उद्देश्य है, एक स्पेशल डे के रूप में इसको मनाया जाए। बाकी प्रोत्साहित तो आप हर दिन किसी ना किसी को जरूर कर सकते हैं, इतने कैपेबल तो आप होते ही हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

आपकी रगों में बहता खून किसी के लिए जीवन दान बन सकता है, इसीलिए रक्तदान कीजिए। एक मुस्कुराहट बनिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। डोनेट ब्लड, सेव लाइफ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: हमारी धरोहर हमारा गर्व है। इन दीवारों पर नाम लिखकर या गुटका थूककर हम इनका नहीं बल्कि अपनी संस्कृति का अपमान करते हैं। ये इमारतें हमारा इतिहास हैं। इन्हें गंदा करके अपना भविष्य धुंधला ना करें। विरासत को सजाएं, बदसूरत ना बनाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना पेंडाल सार शे पंकज। एक अच्छी वाली बात, ऊंचाई पर वही लोग पहुंचते हैं जो प्रतिशोध नहीं परिवर्तन की सोच रखते हैं। देखिए मतलब कितना सिंपल और साफ सा है। आप अपने अंदर बदले की भावना रखकर आगे चलते रहेंगे कि मुझे इससे भी बदला लेना है, मुझे उससे भी बदला लेना है, इसने मेरे साथ ये किया था, उसने मेरे साथ वो किया था और मैं इनको बताकर रहूंगा या बताकर रहूंगी। इस सोच के साथ अगर आप चलते रहेंगे तो इन सब में ही आपका टाइम खराब होता रहेगा। लेकिन आप कुछ नया करने की सोचेंगे, कुछ अच्छा करने की सोचेंगे तो वो आपकी मेहनत एक नया परिवर्तन लेकर आएगी, एक नया चेंज लेकर आएगी जो आपके साथ ही साथ सभी के लिए अच्छा हो सकता है। सो इसीलिए परिवर्तन की सोचें, प्रतिशोध की नहीं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

एक गलत क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई गायब। सतर्क रहिए, अपना OTP और पासवर्ड किसी को ना दें। आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है। डिजिटल बनो पर सावधानी के साथ। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर जे पंकज, एकदम लाइव यहां पर अपने स्टूडियो में बैठकर आपसे मैं बातें शाते कर रहा हूं। और अभी आपके मैसेजेस भी मैं यहां पर बैठकर पढ़ रहा हूं। तो अभी मुझे मैसेज मिला है पुलकित का, जो कह रहे हैं कि सर मुझे गिल्टी सॉन्ग सुनना है करण औजला और इंदर चाहल की वॉइस में। तो चलिए आइए पूरा करते हैं इनकी रिक्वेस्ट को और इंजॉय करते हैं इनका ये ट्रैक गिल्टी।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

हर फॉरवर्ड मैसेज सच नहीं होता। बिन सोचे समझे कोई भी खबर शेयर ना करें, ये किसी की मुश्किल बढ़ा सकता है। पहले जांचिए फिर मानिए। अफवाहों पर लगाम लगा के एक अच्छे भारतीय नागरिक बने, इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

माया, अभी अभी आपने सुना पैव धारिया की वॉइस में। बाकी मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास सारशे पंकज, और मुझे आप सुन रहे हैं आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। शनिवार की ये शाम है, तारीख है आज 12 सितंबर, और आज की तारीख में जो खास रहा उस पर भी मैंने आते ही बात की थी, शो शुरू करते ही बात की थी। बाकी कल संडे है, तो संडे के अगर आपके कुछ प्लान है, क्योंकि ज़्यादातर का वीक ऑफ कल होता है, जो काम करने वाले लोग होते हैं, ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से मैं समझाता हूँ आपको तरह तरह के पर्यावाची शब्द बोल के, तो मैं जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, इसी बहाने बस आपसे हमारी बातें हो जाती हैं। सो कल का क्या प्लान है? कल का प्लान खाली यही है कि घर पर ही रहना है, घर के काम जो रह रहे हैं वो करने हैं, साफ़ सफाई करनी है, या कहीं घूमने का प्लान बना चुके हैं, ऐसा कुछ जो भी मतलब आप करने जा रहे हैं वो ज़रूर आप साझा कर सकते हैं। बाकी इस वक्त जुड़े हुए कहाँ से हैं हमारे साथ, कैसे हमें सुन रहे हैं, फ्रीक्वेंसी के माध्यम से या ऐप के माध्यम से, ये भी बता ही दीजिएगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पर हूँ, आपसे भी कहूँगा कि आप भी यहीं पर रहिए और जाइए कहीं मत, सुनते रहिए मेरे साथ आपके अपने आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM को, और बस जुड़े रहिए अच्छे अच्छे ट्रैक्स के साथ।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस, नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

शहर आपका है, घर भी आपका है, कचरा डस्टबिन में डालें, सड़क पर नहीं। स्वच्छता सिर्फ आदत नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। चलिए मिलकर अपने शहर को चमकाते हैं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आपका अपना पिंदास सार जे पंकज। और जी चलिए अभी कर लेते हैं आपके साथ एक क्विज, और क्विज का जवाब अगर आपने सही दिया तो आपको मिलेगा आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM की ओर से एक सरप्राइज गिफ्ट। तो फटाफट से क्विज सुनिए। क्विज में आज की आपको हमें बताना है अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था, ये बस आपको मुझे बताना है। अगर आपके पास जवाब है तो आप मुझे अपना जवाब भेज सकते हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के ऑफिशियल फेसबुक यानी कि मेटा पेज पर जाकर, या आप हमें कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं 9639012111 पर। और हाँ, आपका जवाब अगर हमारे पास सबसे पहले आता है और जवाब बिल्कुल सही होता है तो आपको मिलेगा आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM की ओर से एक सरप्राइज गिफ्ट। ये वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो देर मत कीजिए, फटाफट से अपना जवाब भेजिए। आपके जवाब का मैं वेट करूंगा म्यूजिकल ब्रेक के दौरान।

स्क्रीन से नजरें हटाइए, अपनों से नजरें मिलाइए। दिन में कम से कम एक घंटा अपने मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब पर रखें और असली बातें करें। डिजिटल दुनिया से थोड़ा ब्रेक असली सुकून के लिए। कनेक्ट विद पीपल नॉट वाईफाई। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज और आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। और जी अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपसे किया था हमारा आज का क्विज, जिसमें मैंने आपसे पूछा था अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था, बस ये आपको मुझे बताना था। तो कई सारे मेरे पास जवाब आए हुए हैं, लेकिन मेरी कंडीशन को पूरा करते हुए जिनका जवाब मेरे पास सबसे पहले आया है और करेक्ट आया है, हाँ जी ये हमारी कंडीशन थी, तो इसके मुताबिक हमारे पास जो सबसे पहले जवाब आया है वो जवाब आया है भुवेन का, जिन्होंने हमें बताया है कि अर्जुन पुरस्कार साल 1961 में प्रारंभ हुए थे। वेल भुवेन, आपका जवाब बिल्कुल सही है और कंडीशन को पूरा करते हुए आपने जवाब सबसे पहले दिया है, करेक्ट दिया है, इसलिए आपको मिल रहा है आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM की ओर से एक सरप्राइज गिफ्ट। आप हमारे स्टूडियो आ सकते हैं और अपना सरप्राइज गिफ्ट लेकर जा सकते हैं। बाकी आप सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त पंकज। हम रोजाना बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं और बहुत सारे नहीं कर सकते तो कुछ काम तो जरूर अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अपने पास हमेशा एक छोटा क्लोथ बैग रखें ताकि बाजार में प्लास्टिक बैग ना लेना पड़े। जी हाँ, जब भी आप बाजार के लिए जाएं तो कपड़े का थैला साथ में हमको जरूर रखकर चलना है। और आपको लगता है कि आप वहां जाकर कुछ खरीदने वाले हैं तो उसे प्लास्टिक की थैली में ना लेकर अपने साथ लिए गए कपड़े के थैले में लें। इसी के साथ अगर सड़क पर कचरा दिखे और डस्टबिन पास हो तो उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दें। एंड इसके बाद आप अपने हाथ धो लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कूड़ा उठाने से गंदे हो जाएंगे। इसी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक प्लेसेस पर किसी को गंदगी फैलाते देखें तो उन्हें प्यार से जरूर समझाएं कि ये गलत है। एंड घर में छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी अपनी धरोहर और अपने धार्मिक मूल्यों के बारे में जरूर बताएं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

आप इसे समझते हैं, ठीक है, बट आपको अगर बॉडी में थोड़ा भी आपको लग रहा है कि आज हम ओके नहीं हैं रोज़ाना की तरह, या आज थोड़ी वीकनेस फील कर रहे हैं, आँखों में जलन है, गले में आपके आपको खराश महसूस हो रही है, या ज़ुकाम है, खांसी है, जो भी है, आपको तुरंत जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करना है, मिलना है जाके डॉक्टर से। एंड ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और घर में छोटे बच्चे हैं तो इस वक्त उन्हें पूरी बाजू के कपड़े जो हैं वो पहनाना शुरू कर दें, क्योंकि शाम के टाइम में देखा जाता है कि मॉस्किटोज़ वगैरह होते हैं, मच्छर वगैरह होते हैं, वो भी काटना शुरू कर देते हैं। तो सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में तो ये खासकर ध्यान में रखें। एंड बदलता मौसम है तो अभी धीरे धीरे जो है चेंजेस आएंगे, है ना, थोड़ी समस्या होती ही है। बाकी अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। एंड कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। बाकी क्विज़ में जितने भी आज हमारे श्रोता आज हमारे साथ जुड़े उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और काफ़ी सारे मैसेज व्हाट्सएप पे आए हैं, काफ़ी सारे सोशल मीडिया पर आए हैं, और कंडीशन के अकॉर्डिंग हम नाम भी वैसे डिक्लेयर कर ही चुके हैं। बाकी अभी आपको जाना कहीं नहीं है, बस जुड़े रहिए यूं ही और सुनते रहिए आपके अपने आज़ाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर, मुझे यानी कि आपके अपने बिंदास आरजे पंकज को। अगला ट्रैक फ्रॉम द मूवी दिल बेचारा।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।

गर्मी हो, सर्दी हो या हो बारिश, इन सब में बेजुबान भी तकलीफ से गुजरते हैं। अपनी छत पर थोड़ा पानी और रास्ते के बेजुबानों के लिए थोड़ा खाना जरूर रखें, क्योंकि इंसान वही जो हर जीव का दर्द समझे। इसी प्यारे संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बंदाज आरजे पंकज, और अभी अपने स्टूडियो में बैठा हूं, यहां पर आपसे बातें शातें कर रहा हूं। अच्छा भाई, हमारे शोज में तो हमारी आपसे बातें होती ही रहती हैं, लेकिन इसी के साथ ही साथ हम बार बार लगातार आपको एक रास्ता और बताते हैं। क्या कह रहे हो कि कौन सा रास्ता, हमने तो कभी सुना नहीं। अच्छा, मुझे लगता है कि आप आज शायद नए जुड़े हैं या आपने सुनी नहीं होगी ये बात। चलिए कोई नहीं, मैं दोबारा आपके लिए बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सो अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे शो से जुड़ी हुई कोई हमें सजेशन देना चाहते हैं शो से पहले या शो के बाद में, तो आप अपने सजेशन, आप अपने सुझाव बिल्कुल हमें बता सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं लिख कर वो भी, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास स्मार्टफोन होता है, एंड्रॉयड फोन होता है, उसमें आप फेसबुक भी चलाते होंगे, इंस्टाग्राम भी चलाते होंगे, तो यहीं पर हम आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, हम आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से आपको हमें सर्च करना है, इसके बाद हम आपको मिल जाएंगे। और इनबॉक्स का रास्ता वहां पर होता है, इनबॉक्स में आप जा सकते हैं, अपना नाम, पता, एड्रेस, जो भी आप लिखना चाहें उसके साथ लिखकर हमें बता सकते हैं कि आपका सजेशन है, या किसी ट्रैक की आपको रिक्वेस्ट करनी है उस रिक्वेस्ट के बारे में भी आप बता सकते हैं। सो इतना सब कुछ आप कर सकते हैं, और इसके लिए बस आपको हमसे हमारे सोशल हैंडल्स पर कनेक्ट होना होगा। सो कनेक्ट नहीं हुए हैं तो कनेक्ट हो जाइए, बाकी सुनते रहिए ऐसे ही आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

क्या आप अपने घर में कचरा फेंकते हैं? नहीं ना, तो फिर अपने देश की सड़कों को गंदा क्यों करना? एक प्लास्टिक की थैली या एक लिफाफा कचरा शायद आपके लिए छोटा हो, पर हमारी धरती के लिए ये बोझ है। प्लास्टिक को नो कहें और कचरे को सिर्फ कूड़े दान में डालें। देश को साफ रखें, देश को स्वस्थ रखें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

किताबें किसी खास के लिए नहीं होती, हर बच्चे का हक है पढ़ना। अगर आपके आसपास कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो उसकी मदद करें, क्योंकि शिक्षा ही असली ताकत है। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

अगला ट्रैक हम सुनने जा रहे हैं बीर करण की रिक्वेस्ट पर, तो आइए सुनते हैं इस ट्रैक को। बाकी आप सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

OTP किसी को ना बताएं और अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। आपकी एक गलती बैंक अकाउंट खाली कर सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, साइबर क्राइम से बचें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें